सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 6, तदनुसार जून 27 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Bharat Taxi is a digital mobility platform based on the principles of cooperation, which gives shape to the concept of Sarthi Hi Malik. Under this model, taxi drivers are not merely service providers, but are also participants and owners of the platform, enabling them to receive the benefits of economic empowerment, social security, and ownership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors, united by a shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA opened new frontiers for growth. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries, and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said in a statement that as part of the operation, two Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The relief consignment included a self-reliant Indian Medical Task Force, an Indian Army Field Hospital unit with HADR pallets and medicines, 30 tons of relief supplies, 6 tons of medicines and medical equipment, and 2 Bhishma Cube portable hospitals. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire, contingent on Hezbollah, halting all attacks and withdrawing from southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as the first step toward restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. After Abubakar gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with 7 different goal scorers. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added 4 more goals in the third. Dilpreet Singh completed the rout with a goal in the fourth quarter. India will next face England tomorrow. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, US. Ousmane Dembele scored a first half hat-trick, helping France to finish at the top of the Group 1. In another Group 1 fixture, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. This big win keeps Senegal in contention of reaching last 32 as one of best third-place teams. And that is the end of this news bulletin.
3: सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के सुरों में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण लता मंगेशकर के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का, आप सुनेंगे कुमार आनंद के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगे सुरभि पान और साथी। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 1:20 पर। दोपहर के 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम के 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा जैविक खाद कैसे बनाएं और उसका उपयोग कैसे करें। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत शकुंतला जामुदा और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगे दिलीप निषाद और साथी। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 9:15 पर। रात्रि के 10 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। हिंदी में समाचार का प्रसारण होगा रात्रि के 11 आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर और रात्रि

बजकर 10 मिनट पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कुमार आनंद के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे कुमार आनंद के स्वर में सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा।

पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहर चायबासा। कार्यक्रम जोहर चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म इजाजत के इस गीत से, आशा भोसले के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म अवतार का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार के स्वर में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। आइए सुनते हैं यह जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नका गे आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: मोर नाम मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहां बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी गाँव बारो हत्तो तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है।
6: मुकुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना यापा मेरे तपा मेरे वहा बेटा मिका
7: अन्या मुकुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितमई कोड़ा मैंने में उड़ी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल में
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का अली आया नु तुम कहीं ना मिल आप ही लेता ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक

0: का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: इन संदेशों के पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं फिल्म आशा का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म आई मिलन की रात। फिल्म का ये गीत आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ लोगों को प्रश्न हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये यह कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
9: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
8: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
3: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with a target to cover the entire state within a month. Aparna Khun, Akashwani News, Gandhinagar.
8: Secretary Department of Atomic Energy Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle utilizing nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCAR, Kalpakkam. Addressing the gathering, Dr. Mohanty said that the integration of nuclear energy with emerging clean energy technologies such as hydrogen production represents a strategic pathway towards a sustainable energy future. We have a report.
10: Dr. Mohanty said that nuclear power with its unique ability to provide reliable carbon-free electricity is ideally suited to support large-scale hydrogen production while contributing to India's energy security, decarbonization goals and long-term sustainable development objectives. The facility has been established as a technology demonstrator to validate the production of hydrogen using nuclear energy through the thermochemical process developed indigenously by Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Department of Atomic Energy said that the commissioning of the facility represents the culmination of extensive research, process development, engineering design, equipment fabrication, installation, testing and commissioning efforts undertaken jointly by BARC and IGCR. Shivamisha, Akashwani News, Delhi.
8: Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan will chair the National Rural Development Conference 2026 to begin in New Delhi tomorrow. The two-day conference will bring together rural development ministers, senior government officials and experts from all states and union territories to deliberate on holistic rural development, review key flagship programs and formulate the future roadmap for rural India. Under the leadership of Union Minister Shivraj Singh Chauhan, this will be the first large-scale national rural development conference of its kind. Jammu and Kashmir police have launched Project Hawkeye, a technology-driven surveillance initiative for round-the-clock monitoring of the Amarnath Yatra route as security agencies intensified preparations for the annual pilgrimage scheduled to commence on July 3rd. A Jammu correspondent reports that the initiative was unveiled by Anantnag police as part of an expanded security grid for the forthcoming Amarnath Yatra. As part of Project Hawkeye, Anantnag police have deployed 5 drone units for aerial surveillance along the Yatra route. As part of a series, Prakriti Ki Baat Akashvani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe, run by Ambikapur Municipal Corporation. The cafe offers meals in exchange for plastic waste. In the program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe. To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today, evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquake struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later, but even stronger 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction more severe. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. We have a report.
11: Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said in a statement that as part of the operation, two Indian Air Force C-17 Globemasters aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The relief consignment included a self-reliant Indian Medical Task Force, an Indian Army Field Hospital unit with HADR pallets and medicines, 30 tons of relief supplies, 6 tons of medicines and medical equipments, and 2 Bhishma Q portable hospitals. The 41-member team, comprising experienced rescue personnel and medical professionals, will work closely with the Venezuelan authorities in search and rescue operations, emergency medical care, and humanitarian relief efforts in the affected areas. Interim President of Venezuela, Delcy Rodriguez, has acknowledged India's solidarity following the earthquake, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. With Suparna's report, Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
8: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors united by shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA open new frontiers for growth. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command, CENTCOM, said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran. The strikes came shortly after U.S. President Donald Trump told reporters at the White House. One will find out if there will be consequences for Iran's violation of the ceasefire agreement.
12: I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually four, we knocked down three, at a ship, not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out.
8: Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim al-Fikri said that Iran's response to the U.S. attack this time would be swift and decisive. In a series of posts on social media, al-Fikri said that Iran will choose the appropriate time and place to answer back. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S. mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire contingent on Hezbollah, halting all attacks and withdrawing from a southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as a first step towards restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital.
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
8: In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India had seven different goal scorers in the match. Subjit Singh and Harmanpreet Singh turned the tide against Pakistan with a goal each in the second quarter before Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal found the back of the net to add four goals in the third quarter. Dilpreet Singh hammered the last nail in the coffin in the fourth quarter. India will now face England tomorrow. In the FIFA World Cup 2026, two-time World Cup champion Uruguay were knocked out of the tournament after losing 1-0 to Spain in the final Group H clash in Mexico this morning. With this win, Spain secured the top spot in Group H

0: आदाब।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर के ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाई बहनों से जमीन के एक छोटे हिस्से में भी प्राकृतिक खेती करने की अपील की है। उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खेत बचाओ अभियान, धरती बचाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी।
2: सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे

0: और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वहां फसल हम बचा सकें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री अठावले रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर को आयोजित एक विशेष सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में मीडिया से संवाद करेंगे। आगामी 30 जून को साहिबगंज के ऐतिहासिक भोगनाडीह में हुल दिवस का आयोजन पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। वीर शहीद सिधो कान्हो के वंशज और सिधो कान्हो हुल फाउंडेशन के अध्यक्ष मंडल मुर्मू ने इसकी जानकारी दी।
2: प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं भोगनाडीह में हुल दिवस। इन वर्ष पे हम लोग हुल दिवस पूरे धूमधाम से मनाना चाहते हैं और आज मैंने साहिबगंज जिले के एसडीओ साहब ने हमने एक आवेदन दिया है हुल दिवस मनाने के संदर्भ में। अतुमन जी वैसी की बिना तले हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज हमने एसडीओ साहब को चिट्ठी दिया है।
1: झारखंड भाजपा ने साहिबगंज के भोगनाडीह में 30 जून को हुल दिवस के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि चांद भैरव और फूलो झानो सहित जनजातीय वीरों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि हुल दिवस पर महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान का व्यापक स्तर पर स्मरण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड
3: हमारे
1: पूरी तरह अटूट है और वर्ष 2029 तक जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। देवघर में कल बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के विभिन्न राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
3: हमारे हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के जो बाकी कांग्रेस है, राजद है, माले, इन्होंने लिखकर 2029 तक के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास में सबका हस्ताक्षर है और सदन के नेता हेमंत जी है, उनको सदन का संपूर्ण विश्वास प्राप्त है और केवल हमारे पक्ष के नहीं, जो हमारे विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं वो भी सरकार की नीतियों के कारण हमारे साथ हैं।
1: रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और राज्य भर में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरडी, लोहरदगा और हजारीबाग सहित संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने अखाड़ाधारियों से निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने तथा जुलूस में असामाजिक तत्वों और खतरनाक प्रदर्शन को रोकने की अपील की है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि शहर में मुहर्रम जुलूस की सुरक्षा के लिए 6,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे और पूरे जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों तथा कंट्रोल रूम से की जाएगी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बिजली का करंट लगने से 9 लोग झुलस गए हैं। यह हादसा भीखना पंचायत के कुसुमडीह गांव में हुआ। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने

0: लोगों से जुलूस के दौरान बिजली के तारों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं कहीं वज्रपात और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 जुलाई तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने सेकेंड एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी बोकारो जिला तीरंदाजी संघ को सौंपी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम खेल स्टेडियम बोकारो में आयोजित होगी। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि इस आयोजन में देश भर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज, ओलंपियन, राष्ट्रीय कोष तथा तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
1: बोकारो जिला तीरंदाजी संघ निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतने महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसका आयोजन तुम्हार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होना।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा, चोरी और उस पर कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में वज्रपात ने ली 6 की जान, दर्जन भर झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, 177 करोड़ की लागत से बनेगी 10 लेन की स्मार्ट सड़क। दैनिक भास्कर ने लिखा है, माध्यमिक आचार्य के 7 विषयों का रिजल्ट जारी, 315 सफल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली से रांची आ रहे विमान में आई तकनीकी खराबी, प्लेन के भीतर 3 घंटे फंसे रहे यात्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर में ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम

सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार हैं सुरभि पान और साथी।
1: कौन कौन काचो आनी छो, देखाओ नी बाटी के।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना उड़िया लोकगीत कलाकार थी सुरोबी पान और साथी। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा में बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर। आज विशेष दिन है श्रोताओं, आज के दिन ही 27 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों का भूमिका इस देश में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उद्योग 90% व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करती है और भारत सरकार की केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय भारत सरकार प्रयासरत है कि भारत के सारे नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न बने और विकसित देशों के समान ही हमारा देश भी आत्मनिर्भर बने। इसके लिए जरूरी है कि हम उन क्षेत्रों को विशेष ध्यान दें जिस पर 70-80% आबादी जीवन यापन के लिए प्रयासरत है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन लोगों को सहायता देने की जरूरत है जो प्रयासरत हैं, और इसके लिए भारत

सरकार की जो ये मंत्रालय है, खास करके औद्योगिक विकास का दर को और बेहतर करें ताकि विकसित देश की श्रेणी में हमारा देश आगे आए। इसके लिए संविधान में भी सारे लोगों को समान अधिकार की बातें दी गई है। इस मंत्रालय के द्वारा लघु एवं सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की यदि हम बातें करें इस देश में, इसकी वार्षिक टर्नओवर, तो लघु उद्योग लगभग 50 करोड़ का टर्नओवर है इसका, और मध्यम उद्योगों का इस देश में 100 करोड़ है, और सूक्ष्म उद्योगों का 5 करोड़ है। इस प्रकार श्रोताओं, हम देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु श्रोताओं, इसके साथ साथ कई चुनौतियां हैं इन उद्योगों को। पूंजी के अभाव में उन्हें सही पूंजी नहीं मिल पाता है, उसके कारण कई उद्योग जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो कामयाब नहीं हो पाते हैं। परंतु भारत सरकार प्रयासरत है कि सारे उद्योगों को सहायता मिले, उनकी चुनौतियों का सामना हो, क्योंकि वर्तमान समय में वैश्वीकरण और औद्योगिकरण के इस युग में जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रवेश हो चुका है, ऐसा स्थिति में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। परंतु भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी इन उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना है, इसके साथ साथ और भी कई योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने। सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को पूरा करता है हमारा यह लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए मनोरंजन करते हैं इस फिल्मी संगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे फिल्मी संगीत से। इस फिल्मी संगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं बरसात के मौसम में होने वाली बीमारी एवं उससे बचाव।
1: विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का नमस्कार। श्रोताओं, मानसून आ चुका है और मानसून के इस समय में बीमारियां बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। यूं तो शहरी क्षेत्रों में भी बीमारियां होती है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां बढ़ने की संभावना रहती है। तो आज इसी संदर्भ में हम नामसी देवगम जी से जानकारी लेंगे कि बरसात के इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना होती है और उसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं। तो नामसी जी, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए कि स्वच्छता क्या है।
2: सबसे पहले सभी श्रोता गण को मेरा नमस्कार। स्वच्छता जो है वो केवल एक आदत नहीं होता है, बल्कि वो स्वस्थ जीवन जीने का आधार होता है। इसी संदर्भ में 2 अक्टूबर 2014 से भारत सरकार ने स्वस्थ भारत मिशन शुरू किया, जिससे गांव देहात के लोगों में स्वच्छता का आदत विकास करे। इसके लिए भारत सरकार ने ये मिशन चलाया है ना। स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को बहुत सारे स्वच्छता का ध्यान देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो पीने का पानी, सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि हम पीने का पानी ला कहाँ से रहे हैं, कुआं से, चापाकल से, नदी से, कहाँ से ला रहे हैं। पानी जो है हमेशा ऐसे जगह से लाना चाहिए जिसके आसपास गंदगी जमा ना होता हो, गंदा पानी का ठहराव ना होता हो, है ना। और पानी जितनी गहराई से आता हो और थका हुआ हो, तो जैसे चापाकल से ला रहे हैं तो चापाकल के आसपास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, कचरा फेंका नहीं जाना चाहिए, ऐसे जगह से पानी लाना चाहिए। तालाब का पानी या नदी का पानी पीने के लिए नहीं लाना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें नदी की जति आपने बात कही है कि गांव क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में नदी के किनारे लोग चूहा बना करके पानी लाते हैं, तो क्या इसके कारण भी बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है?
2: इसके कारण बीमारियां बढ़ने का अधिक संभावना होता है, क्योंकि नदी का चूहा का पानी जो है वो गहराई से नहीं आता है, जमीन की गहराई से नहीं आता है, वो नदी का ही पानी होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा बालू हटा के करते हैं तो थोड़ा साफ दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में पीने लायक साफ नहीं होता है और सुरक्षित नहीं होता है। हम लोग पानी ले आते हैं, उसके बाद हम लोग पानी का रख रखाव का भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग को घर में पानी जो है थोड़ा सा ऊंचा जगह में रखना चाहिए, जिससे बच्चे हाथ ना लगाए, और पानी को ढक कर रखना चाहिए। उसको पीने का पानी को निकालने के लिए भी लंबा डंडा वाला लोटा या टिसनी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि पानी में उंगली ना लगे, हाथ ना लगे। इसके साथ ही हम लोग को खाना बनाने का भी ध्यान देना चाहिए, साफ बर्तन के साथ साथ साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, सब्जी उब्जी भी जो लेकर आते हैं, उसको पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, उसके बाद उसको साफ बर्तन में ही पकाना चाहिए, है ना। खाना भी हम लोग को गरम गरम खाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग को घर में जो है पानी का सही निकासी का भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग बर्तन घर के आसपास धोते हैं, तो बर्तन धोने से जो पानी का जमाव होता है, वहाँ पर बहुत तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, मक्खियाँ उत्पन्न होती है, जो हमारे खाने पीने के सामान तक पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही घर में और घर के आसपास हम लोग को साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। जैसे घर के आसपास घास है, झाड़ियां हैं तो उसको काट देना चाहिए। पानी कहीं जमा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं बर्तन धोते हैं, कुछ करते हैं, कोई गड्ढा बना के रखे हैं जिसमें पानी जमा होता हो, तो उसमें किरासन या फिनाइल डाल के देना चाहिए, जिससे उसमें एक पतला परत तैयार हो जाता है, जो पानी, गंदा पानी जो है हवा के संपर्क में नहीं पहुंचता है और उसमें कीड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। तो उसका भी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। हमेशा गड्ढा जो है ढका हुआ बनाना चाहिए। जितना हो सके हम लोग के घर के आसपास हम लोग को कूड़ा जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक का कोई टुकड़ा, कोई बर्तन का टुकड़ा कहीं किनारे पड़ा हुआ रहता है, कोना में पड़ा हुआ रहता है, तो उसमें पानी जमा, बरसात का पानी जमा हो जाता है। तो बरसात का पानी जमा होने से उसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं, तो जिससे मलेरिया फैल सकता है। मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होते हैं, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ये सब मच्छर जनित बीमारियां हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आसपास कहीं टूटा फूटा सामान जिसमें पानी ठहरता हो ऐसा नहीं रखना चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए।
1: अच्छा, इसके साथ ही और एक जानकारी दीजिए साथ में कि बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसका बचाव हम कैसे करें।
2: बरसात के समय में सर्दी जुखाम, मलेरिया, हैजा, डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, ऐसी बीमारियां और खुजली, ऐसी बीमारियां होती है ना।
1: तो इससे हम बचाव कैसे करें।
2: इससे बचाव का तो यही तरीका है कि हम लोग अपने आसपास पानी का जमाव होने ना दें, जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो, और

0: जितना हो सके हम लोग गर्म पानी करके पिए। जैसे हम लोग पानी कुआं से लेकर आते हैं, तो कुआं अगर ढका हुआ नहीं है तो उसका पानी को हम लोग को गर्म करके इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे सफाई किट का इस्तेमाल करके हाथ अच्छे से धोना, खाने पीने से पहले हाथ अच्छे से धोना, नहाना धोना का विशेष ध्यान देना चाहिए। और घर का और घर के आसपास का सफाई अच्छे से करना चाहिए। जैसे घर के आसपास कूड़ा करकट जमा नहीं करना चाहिए, है ना। झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसे समय में कीड़े मकोड़ों के साथ सांप बिच्छू का भी निकलने का संभावना रहता है। इसलिए जितना हो सके सफाई का ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाए रखना का कोशिश करना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें और जानकारी दीजिए कि वर्तमान समय में जो केंद्र सरकार खुले में शौच रोकने के लिए काम कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, मिशन के तहत, तो ये खुले में शौच का क्या दुष्परिणाम हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए? जो क्या इससे बीमारियां फैलने की संभावना हो जाती है?
0: स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे विशेष इसी चीज का ध्यान दिया गया है कि खुले में शौच का आदत जो है वो बंद हो और शौचालय का निर्माण किया जाए। शौचालय का उपयोग करने का, अपने अंदर विकास आदत का विकास किया जाए। इसके लिए सरकार ने सबको लो कॉस्ट शौचालय भी बनवा कर दिया है। इस क्या होता है, हम लोग जब बाहर शौच करने जाते हैं तो उस शौच मक्खियों उस शौच पर मक्खियां बैठती है। ये मक्खियां बहुत दूर तक, मतलब मक्खियां 1 घंटे में 400 किलोमीटर दूर तक उड़ सकती हैं। तो सोचिए कि ये कहीं आप बहुत दूर जंगल में भी गए हैं तो गांव से आप 400 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं शौच के लिए। 400 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं, गांव से बाहर तक जा सकते हैं, जंगल तक जा सकते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर दूर तक तो आदमी नहीं जाता है। तो मक्खियां वहां इतना दूर तक जा सकती है, तो वो शौच लेकर वो
1: कहीं उड़ सकती है।
0: कहाँ तक नहीं जा सकती, मतलब घर में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। कहने का मतलब है घर में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। उसके बाद क्या होता है, बरसात का समय है तो ये शौच फैलता है, पानी के साथ बह के नदी में तालाब में चला जाता है। अगर कुआं में पानी का घुसने का जगह है तो कुआं में भी चला जाता है। कभी अगर शौच सूख गया है तो आंधी तूफान में हवा के साथ भी, धूल के साथ भी उड़कर चला जाता है, और जो ढका हुआ कुआं नहीं है उसमें भी पहुंच सकता है। तो इस तरह जो है वो धूल तालाब नदी इसमें भी मिल सकता है। तो इस तरह से बह करके वो कहीं बहुत दूर तक भी जा सकता है। तो हमारे खाने पीने के सामान में हवा के द्वारा या मक्खियों के द्वारा वो पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोग को खुले में शौच नहीं करने का आदत को विकसित करना चाहिए, जिससे कि बीमारियां ना फैले।
1: तो ऐसे समय में जो खुले में शौच की जो प्रथा रही है, खास करके महिलाओं को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बरसात के मौसम में तो खेत खलियान का काम होता है, और यदि शौचालय का निर्माण ना हो, खुले में शौच करे, तो क्या उस पर स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है? क्योंकि कई समय तक उनको इंतजार करना पड़ता होगा।
0: गांव देहात में क्या होता है, महिला हो या पुरुष, उन्हें शौच के लिए थोड़ा अंधेरा में निकलना पड़ता है, चाहे तो वो सुबह भोर में हो या फिर शाम के समय में जाते हैं। दिन में या तो उनको समय नहीं मिलता है, और दिन में उजाला होने के चलते वो उनको दूर तक जाना पड़ता है, या तो फिर जगह नहीं मिलता है जाने के लिए।

0: नदियों के पीछे तक जाने के लिए जगह नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है, उनको अगर दिन में शौच लग रहा है तो उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, शाम होगा जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, शाम होगा तब जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह कंट्रोल करने से क्या होता है, अंदरूनी बीमारियां महिलाओं को हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी उनके बच्चेदानी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और मानसिक रूप से भी इसका मतलब उनमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब उनकी इच्छा है और वो शौच जाने का और वो जा नहीं पा रही होती है, तो कंट्रोल करते करते उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो इस तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो बीमार हो सकती है।
1: अर्थात जो केंद्र सरकार जो शौचालय का निर्माण किया है इसी संदर्भ में किया।
0: जी हाँ, इसके साथ ही क्या होता है, जब महिलाएं मान लीजिए भोर में जाती हैं या शाम के समय में अंधेरे में निकलती हैं, तो अभी बरसात का समय है, सांप बिच्छू और दूसरे कीड़े जहरीले कीड़े मकौड़ों का भी प्रभाव पड़ता है, मतलब उनका भी खतरा रहता है,
1: इसके लिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए,
0: इसीलिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए।
1: नामसी जी, और एक अंतिम जानकारी दीजिए कि ये जो बीमारियां हैं इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बरसात के मौसम में जो इतनी तेजी से फैलती है।
0: इसमें हम लोग को कुछ व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, जैसे कि नहाना धोना, रोज नहाना धोना, अपने शरीर को साफ रखना, और खाने पीने से पहले अपना हाथ का अच्छा से सफाई किट के सहायता से हाथ को साफ रखना, जिससे कि खाने पीने का सामान गंदा ना हो जाए या मुंह तक किसी प्रकार का गंदगी ना चला जाए, इसीलिए। और भीगे कपड़ों में हमें देर तक नहीं रहना चाहिए, इससे सर्दी जुखाम जैसी आम बीमारियां होती हैं, और घर में हमेशा बरसात के समय में गर्म पानी करके रखना चाहिए, जिससे बच्चों को और बुजुर्गों को सर्दी खांसी होने का ज़्यादा संभावना या जल्दी संभावना होता है, इसीलिए गर्म पानी पिलाना चाहिए, और भोजन भी ऐसे समय में ढक कर रखना चाहिए। बरसात के समय में कीड़े मकौड़े ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, मक्खियाँ उत्पन्न होती है, इसीलिए खाना को ढक कर रखना चाहिए, और जितना हो सके इस समय में मतलब इस मौसम में खाना गर्म खाना चाहिए, बाजार से खाने पीने का सामान नहीं लाना चाहिए, खाने मतलब पका हुआ सामान नहीं लाना चाहिए, और जितना हो सके हमें हर्बल टी, काढ़ा या सूप जैसी चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए, इससे भी हमारा रोग विरोधक क्षमता बढ़ता है और कई बीमारियों से हम दूर रहते हैं, और ऐसे सीजन में जितना हो सके सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए।
1: क्या वैसा समय में जो बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है तो वहाँ लोग झाड़ फूंक का भी सहारा लेते हैं, तो क्या झाड़ फूंक छोड़ करके डॉक्टर के पास सलाह लेने की जरूरत है?
0: जब हम बीमार होते हैं तो हमें जितना जल्दी हो सके हमारे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए।
1: और नामसी जी, आपने हमारे श्रोताओं को स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी, खास करके बरसात के मौसम में, और खास करके अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे बरसात के मौसम में होने वाली बीमारी एवं उससे बचाव, जानकारी दे रही थी नामसी देवगम। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: नाम है रंगबला देवी। गाँव बारे हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए है।
6: नितुम बुरेम सिंह तामसोय अनिता तामसोय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुरे में ना आया यापा में इरिया तपा में इरिया वाह बेटा निका
7: अन्य नितुम दो बुंबई कोड़ा पटन नितुम गुमरे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन नितुम कितमई कोड़ा मुनिमिन उड़ी उड़ी ने बागिया तोड़ के ये दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमा दुर्रम गई यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेर मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम ते ना मिले आप ही लेते ना।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
2: उपभोक्ताओं तक श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम विविधा संपन्न होता है। आप सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म चला मुरारी हीरो बनने के इस गीत से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म पड़ोसन का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पतंगा से।

0: अभी आपने सुना फिल्म प्यासा का ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।
3: यूं ही तुम मुझसे बात

अभी आपने सुना फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आपने सुना फिल्म बाजीगर का ये गीत अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आरजू से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म आरजू का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बस इतना सा ख्वाब। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और शान की।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: 105 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। जोहार रांची के एक और नए अंक के साथ मैं ऋतुश्री जोहार साथियों और श्वेता आपको भी हमारा जोहार नमस्कार।
1: जोहार नमस्कार।

0: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक सुविचार। आज के युग में मनुष्य ने तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर ली है, इस कारण उसे अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की है। हमारे पास पहले से बेहतर मोबाइल है, तीव्र गति के साधन है और सुख सुविधाओं के तमाम संसाधन उपलब्ध है, जिनकी पहले हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और वह है कि क्या इतनी प्रगति के बाद भी मनुष्य के भीतर की अशांति कम हुई है?
1: ये तो बिल्कुल सही प्रश्न है। क्या हम अपने भीतर से शांत महसूस करते हैं? सच्चाई तो ये है कि आज हम बाहर से जितने चमक दमक वाले दिखते हैं ना, भीतर से उतने ही उलझे हुए हैं। हम बाहर से जितना शांत दिख रहे हैं, जितना प्रसन्न दिख रहे हैं, भीतर से उतने ही अशांत और उतने ही अप्रसन्न खिन्न हैं। तो इसका एक कारण है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है, इसलिए हमें मन को बदलकर देखना चाहिए। और जब हम अपने मन को बदल लेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, तो फिर हम हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, है ना?

जोहरांची में एक बार फिर स्वागत है आप सबों का दोस्तों। और श्वेता, अब हम बातें करते हैं मौसम की। हाँ, तो ये बता दें कि झारखंड समेत 16 राज्यों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में अगले दो दिन

0: शनिवार और रविवार को बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी चलने का भी पूर्वानुमान है। बिहार में 25 से 29 जून तक भारी बारिश और आंधी का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शनिवार रविवार को झारखंड में रांची समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: और साथ ही वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और येलो अलर्ट वाले पलामू समेत 4 जिलों में यह रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम बदलाव के कारण अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में अगले 2-3 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
0: हाँ, और ये भी बता दें कि 24 घंटों के दौरान मानसून जो है वो कमजोर रहा। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा है। ये गढ़वा और पलामू के पूरे हिस्सों तक कायम नहीं हो सका है। इसके 28 जून से लेकर 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे राज्य में कायम होने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई। इसमें पाकुड़ में 27.8 मिलीमीटर और गिरिडीह में 18.0, देवघर में 16.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई और उमस बनी रही। तो अब जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश हो नहीं रही है। ये अलनीनो का इफेक्ट है और हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं ताकि ये जो बारिश हो और हम सब राहत महसूस करें।

0: और अब ये बता दें कि इतिहास में आज क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो 2002 में G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए।
1: 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द।
0: और 2004 में आज ही के दिन अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जीपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर

0: चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया।
1: और ये भी बताते चलें कि 2015 में भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला लिया। और ये भी बता दें कि आज ही के दिन से हम जो एटीएम का उपयोग करते हैं ना, उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी।

0: और अब हम ये बताते चलें कि आज किन का जन्मदिन है। 1955 में पूर्णिमा वर्मन, जो भारतीय पत्रकार थी, इनका जन्म आज के दिन हुआ था।
1: 1950 में नितिन मुकेश, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं।
0: और 1939 में राहुल देव बर्मन, जो कि हिंदी फिल्मों के एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
1: 1928 में आरडी प्रधान, जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके थे।
0: 1922 में अकिलन, तमिल भाषा के साहित्यकार थे, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।
1: 1919 में अमला शंकर, मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर थीं।
0: और ये भी बता दें कि आज के दिन ही उड़न परी, भारतीय खिलाड़ी जिन्हें हम सब पीटी उषा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 1964 ईस्वी में हुआ था।

0: और अब इतिहास में बातें उनकी जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कहा। 2008 में सैम मानेकशॉ, जो भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उनका निधन आज के दिन ही हुआ था।
1: 1839 में आज ही के दिन रणजीत सिंह, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा थे, उनका निधन भी आज के दिन ही हुआ था।
0: हाँ हाँ, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे भी हैं श्रोता, जिनकी वीरता, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरणा देती है। ऐसा ही नाम था महाराजा रणजीत सिंह का, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है।
1: 13 नवंबर 1780 को जन्मे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब की विभिन्न सिख मिसलों को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी लाहौर थी और उनका शासन केवल सैन्य शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सुशासन के लिए भी जाना जाता है।
0: महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके लिए सभी समुदायों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया करते थे। उन्होंने अमृतसर स्थित हरमंदर सिंह साहब को स्वर्ण मंडित कराया, जिसके कारण आज वह दुनिया भर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
1: उनकी सेना आधुनिक प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। अपने शासनकाल में उन्होंने उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोके रखा और पंजाब में शांति तथा समृद्धि स्थापित की।
0: 27 जून 1839
1: को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था, लेकिन उनका साहस, नेतृत्व और न्यायप्रियता आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णित है।
0: उनकी स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें वीरता, देश प्रेम और आत्मसम्मान से भर देता है।

0: श्वेता, अभी हम जानकारी ले रहे थे इतिहास के बारे में, और अब हम चलते हैं कहीं घूमने।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है घूमना फिरना भी। आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में हम कुछ पल सुकून के भी बिताने चाहिए, क्यों रितु जी?
0: बिल्कुल, तो आज हम कहाँ चल रहे हैं? आज हम चलेंगे अमरकंटक। हाँ, ये मॉनसून में खिल उठता है और अभी मॉनसून चल रहा है, तो एक बार अमरकंटक आप जरूर अभी चले जाएं। ये है मांडू, पंचमढ़ी, सांची, खजुराहो के अलावा मध्य प्रदेश में घूमने की एक जगह है। यहाँ हम मॉनसून के दौरान ही घूमने जा सकते हैं। इसके इलाके में बारिश के मौसम में एक जादुई बदलाव से ये सारे इलाके जो है ना वो गुजरते हैं। घने जंगलों से घिरा एक ऐसा ही शहर है अमरकंटक, जो मॉनसून में हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। घुमावदार पहाड़ियां, घने जंगल और गिरते झरने न सिर्फ एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं, बल्कि विश्राम और कायाकल्प के लिए एक शांत वातावरण भी पर्यटकों को देते हैं। इसलिए अगर हमें प्रकृति की सुंदरता के बीच एक बार फिर शांतिपूर्ण अनुभव की तलाश में जाना है, तो मॉनसून में अमरकंटक जरूर जाएं।
1: विंध्य व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित यह जगह कपिलधारा और दूधधारा जैसे कई झरनों से समृद्ध है, जो देखने लायक है। नर्मदा उद्गम मंदिर और कुलचरी मंदिरों जैसे प्राचीन मंदिरों के माध्यम से यहाँ के इतिहास व वास्तुकला की खोज करें। विभिन्न ट्रैकिंग ट्रेल्स व प्रकृति की सैर के माध्यम से विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज कर सकते हैं। हरियाली, धुंध भरे परिदृश्य और झरने के बीच आप यहाँ फोटोग्राफी का रोचक अनुभव भी ले सकते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल से फोटो जरूर लेते हैं, घूमने जाते हैं तो मोबाइल से सेल्फी लेना तो बनता है, तो यहाँ आप जरूर सेल्फी ले सकते हैं। हाँ? वैसे तो अक्टूबर से मार्च यहाँ की यात्रा के लिए आदर्श समय है, लेकिन मानसून की खूबसूरती का नज़ारा देखना चाहते हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आना ठीक रहेगा। अगर आप हवाई जहाज से अमरकंटक जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ के लिए सीधी कोई फ्लाइट नहीं है, बल्कि आपको पहले बिलासपुर पहुँचना होगा। वहीं अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन करौंजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचकर आप टैक्सी ले सकते हैं। अमरकंटक पहुँचने के लिए जहाँ तक बात करें यहाँ रुकने की, तो आपके बजट में यहाँ हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे।
0: हाँ, तो एक बार हमें अमरकंटक जरूर घूमकर आना चाहिए,
1: और सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए।
0: हाँ, और
1: जुलाई महीने भी आ रहे हैं, इसमें तो है कि जुलाई और सितंबर के बीच जाना चाहिए।
0: हाँ, और अमरकंटक जो है ना, ये नदी जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है।

0: और श्वेता, हम घूमना फिरना तभी हमें अच्छा लगेगा जब हम
1: स्वास्थ्य सही रहेगा।
0: बिल्कुल। तो अब इस विषय पे थोड़ी चर्चा कि हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहे। एक जमाना था जब स्वास्थ्य के लिए किसी को कोई खास चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी के लिए भी हमें अधिक ध्यान देना होता है। स्वस्थ जीवन के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग शरीर को भोजन का बोझ देने जैसा भोजन करते हैं, जबकि शरीर को संतुलित और हल्का आहार की जरूरत होती है।
1: शारीरिक श्रम स्वाभाविक होना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही खान पान पर ध्यान देने के लिए सचेत करना चाहिए। हमारा भोजन तेजज हो, अधिक से अधिक मोटे अन्न एवं उबले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। हमारे विचार व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने विचार व्यवहार को भी स्वच्छ रखेंगे तो भी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल। और ये जो जीवन शैली हमारी जो है ना, वो किन कारणों से प्रभावित हो रही है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो जीवन शैली अब जो है वो हम खुद तय नहीं करते, बल्कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और खाने पीने की चीज़ें जो है ना, ये तय करती हैं। और लोग शारीरिक गतिविधियों नौकरी के मुताबिक ढाल रहे हैं, इसकी वजह से लोग कहीं हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं डिप्रेशन के। महानगरों की स्थिति तो और भी दयनीय है। जिंदगी में कुछ हासिल करने की चाहत और कामयाबी की हसरत के साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां ये हमें लगातार बढ़ोतरी की ओर ले जा रहे हैं।
1: शरीर आपका है तो ध्यान भी आपको रखना होगा। हम अपने भविष्य के प्रति काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की चिंता किए बगैर संतुलित भोजन के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देना पड़ेगा। नियमित व्यायाम करें, टहले, अनावश्यक तनाव न लें, गरिष्ठ भोजन ग्रहण न करें, नशा पान न करें। बच्चों और युवाओं का खान पान बड़ी चिंता का विषय है। नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक में प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ग्रहण करते हैं। कुछ हद तक शहरी जीवन शैली में वक्त की कमी भी लोगों को इन पर निर्भर बना

0: लिया है, लेकिन इनसे बचना होगा। देशज भोजन ग्रहण करें, कई बीमारियों की जड़ आपकी आदतों में छुपी है ना, उन आदतों को बदले आप स्वतः ही स्वस्थ रहने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ, और हम अपने विचारों को अच्छा रखें, जीवन को एक हम संतुलित रूप से जिएं और हमेशा आशावान रहें।
0: जी बिल्कुल।

0: तो श्वेता, जिंदगी में इसी तरह की प्रेरणा बनाकर हमें आगे बढ़ना है
1: जी।
0: और अब हमारे कार्यक्रम का वक्त यहीं संपन्न होता है। तो जोहार रांची से ऋतुश्री को दें विदा। नमस्कार, जोहार।
1: इजाजत, जोहार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे आपकी पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: और आइए अब सुने आपकी पसंदीदा फिल्मी नंगों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये पहली फरमाइश भेजी है आप सबों ने सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आप सब हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। तुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म लव इन टोक्यो का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, हसरे जयपुरी के बोल है और संगीत है शंकर जय किशन का।

और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तीन देवियां का ये गाना। मजरूह के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत। इस गीत को सुना जाए है आप सबों ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरिंगी से भागवत वर्मा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, मलविंदर विरक, जातेक विरक और मीका विरक। आप सबने सुना चाहा है फिल्म आरजू का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, हसरजा पूरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

ग्राम भगबुड़वा पथरिया से नरेन नेता, कुसुम नेता, प्रोनामिका, प्रोनिका और उत्कर्ष नेता, और आप सब हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनीज महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, टपलोल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, कौरव नायक, मंजू नायक, चलेश्वर नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबों ने सुना चाहे है मुकेश की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये गाना, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत।

पोंडा काटा से नरसिंह मैली, सावन मैली, रॉकी मैली, कविता मैली, हरसमनी मैली और पार्वती मैली, यहीं से सुहानी मैली, संजय सोरेन, राजीव सोरेन, नंदिनी मैली और एनएस मैली, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबों ने सुना चाहे फिल्म मेरा साया का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

रैप फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो आपकी पसंद पर आधारित था, आपकी पसंद संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुने बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का सप्रेम नमस्कार। स्वागत है आप सबका। बहनों, आज वीकेंड है तो हमेशा की ही तरह आप बिता सकती हैं फुर्सत के पल और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकती हैं जिसके लिए साधारणतः आपको वक्त नहीं मिलता। आज हम चर्चा भी आपसे इसी विषय पर करेंगे। समय सबसे बलवान होता है, ये हमने बचपन से सुना है और हमें सिखाया भी गया है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो हमें समय का एक एक पल जी भर के जीना चाहिए और साथ ही हमें समय का सम्मान भी करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक शाश्वत सच है। धन, संपत्ति और अन्य खोई हुई वस्तुएं वापस आ सकती हैं, लेकिन वक्त वापस नहीं लौटता। और समय का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम समय का प्रबंधन करना सीखते हैं। किसी भी काम को टालते रहने से वह कभी पूरा नहीं होता। समय प्रबंधन हर किसी के जीवन में उपयोगी है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। हमारी बहनें समय का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करती हैं, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में इतने सारे काम करने होते हैं, है ना। और समय प्रबंधन के लिए हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सही समय पर सोना, सुबह उठना, हर एक काम को सही समय पर करना बेहद जरूरी है। हमें सबसे जरूरी काम पहले कर लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा समय के लिए आराम करना, मनोरंजन करना या मनोरंजन को अधिक समय देना, महत्व देना, ये सभी आगे चलकर नुकसानदेह हो सकते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग सिर्फ काम ही करते रह जाते हैं, आराम और मनोरंजन को वे बिल्कुल महत्व नहीं देते, और ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें समय निकालकर अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से मिलना जुलना चाहिए, उनके साथ घूमना फिरना चाहिए या उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। तो बहनों, मैं फिर बता दूं, आज शनिवार है, वीकेंड है और आज आप भी आराम कर सकती हैं, कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जो आपकी हॉबीज हैं, उसके लिए भी समय निकाल सकती हैं। और आप अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, करीबी मित्रों से आप बातचीत कर सकती हैं, उनके साथ कहीं जा भी सकती हैं, यानी कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती हैं। और बहनों, मैं बता दूं, आज शनिवार है तो आज हम लेकर आते हैं आपके लिए गीतों भरी कहानी। तो हम कहानी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी घर। प्रज्ञा माता पिता की लाडली थी। श्रीमती और श्री सुबोध रंजन ऐसी पुत्री पाकर अपने को धन्य समझते थे। बेटी बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली थी, तभी तो पिता ने उसका नाम प्रज्ञा रखा था। अपने काम में जितनी दक्ष थी, स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सीधी सरल स्वभाव वाली थी प्रज्ञा। अपनी बेटी की इन्हीं अच्छाइयों को देखकर कभी कभी प्रज्ञा की माँ गीतांजलि देवी चिंता करती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मेरी बेटी इतनी होनहार है और सीधी साधी भी, विवाह के बाद पता नहीं इसे कैसा घर मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। और बात बिल्कुल स्वाभाविक थी, लोग अक्सर अपने सबसे सीधे साधे सरल संतान के बारे में ही तो चिंतित रहते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया छल कपट से भरी है, यहां अच्छे लोगों के लिए बहुत मुसीबतें हैं। प्रज्ञा इन बातों से अनभिज्ञ थी, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई या कामकाज में डूबी रहती। सुबोध रंजन का एक बेटा भी था, यानी प्रज्ञा का छोटा भाई राजेश। उसका आचरण यूं तो ठीक ठाक ही था, बहन को भी सम्मान देता था, उसकी फिक्र भी करता था, लेकिन उसके मन में एक बात कांटे की तरह कभी ना कभी चुभ जाती। वो ये कि माता पिता प्रज्ञा को अधिक महत्व देते हैं। प्रज्ञा को भला इन सभी बातों से क्या लेना देना। वो तो हर बात में कहती थी, माँ ये तो बहुत अच्छा है, इसे राजेश को ही लेने दो, उसे पसंद आएगा। उसे अपने छोटे भाई के पसंद का बड़ा ही ख्याल था। प्रज्ञा इस दुनिया से अनजान अपने ही काम में मगन रहती, सबके सुख दुख को समझती थी। उसके इस संवेदनशील और सहिष्णु चरित्र से ही तो लोग प्रभावित थे।

अब समय आया प्रज्ञा के विवाह का। माता पिता ने काफी छानबीन करने के बाद एक लड़के को पसंद किया। प्रज्ञा ने अपने विवाह के फैसले को माँ बाप पर ही छोड़ रखा था। वह सोचती थी कि मम्मी पापा जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। प्रज्ञा का विवाह कुछ ही दिनों में राजकुमार शर्मा के पुत्र विवेक से हो गया। विवेक पढ़ा लिखा समृद्ध परिवार का लड़का था। राजकुमार शर्मा पेशे से वकील थे, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति भी उन्हें काफी मिली थी। कुल मिलाकर प्रज्ञा एक अच्छे परिवार की बहू बन गई। प्रज्ञा के विवाह के बाद राजेश की भी शादी की बात चलने लगी। राजेश अपनी बहन से अलग था। उसने साफ कह दिया था, मुझे जब तक लड़की अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी मैं शादी करने वाला नहीं हूं, कृपया मुझ पर कोई दबाव न डालें। श्री सुबोध और गीतांजलि देवी ने इस बात पर पहले से ही हामी भर दी थी। राजेश का विवाह भी कुसुम से हो गया, जो उन्हीं के दूर के रिश्ते में थी। प्रज्ञा की गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही थी। इधर राजेश और कुसुम भी अच्छा जीवन बिता रहे थे। श्रीमती और श्री सुबोध रंजन भगवान का आभार मानते। गीतांजलि देवी कहते नहीं थकती थी कि हम लोग जैसे साधारण लोग के बेटे बेटी की शादी कितने अच्छे तरीके से हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक दिन प्रज्ञा के घर एक चिट्ठी आई। वो विवेक के नाम की थी। प्रज्ञा को पता चला कि विवेक को अपनी कंपनी के तरफ से जापान भेजा जा रहा है। तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और नौकरी में तरक्की भी हो जाएगी। थी तो ये बड़ी खुशी की बात, लेकिन अभी शादी हुए एक ही साल हुआ था। विवेक के माता पिता भी इस बात से काफी खुश नहीं थे, और विवेक का तो जैसे बरसों का सपना पूरा हुआ था। प्रज्ञा भी कुछ नहीं कह पाई। उसे खुशी तो थी, लेकिन कुछ चिंतित भी रहने लगी। कुछ ही दिनों में विवेक जापान चला गया और अपने छोटे भाई विनीत की शादी तक भी नहीं रुक पाया। अब प्रज्ञा को अकेलापन महसूस होने लगा। यूं तो घर के सभी लोग उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे, विनीत और उसकी पत्नी मधु भी उसे बहुत मानते थे, लेकिन कभी कभी प्रज्ञा को ये लगने लगा था कि सबको बस अपनी ही पड़ी है, मेरी किसको परवाह है। विवेक का फोन या मैसेज अगर देर से आता तो काफी नाराज हो जाती। इसी तरह धीरे धीरे परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगी, खासकर प्रज्ञा और उसकी देवरानी मधु के बीच। प्रज्ञा के व्यवहार में से न जाने वो चंचलता और मधुरता कहां खो गई थी।

एक दिन प्रज्ञा ने कुछ महीनों के लिए अपने मायके जाने का प्रस्ताव रखा। जरूरी भी था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ससुराल वालों ने इजाजत दे दी। विवेक ने भी कहा, हाँ प्रज्ञा, कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ, तुम्हारे भैया भाभी भी तुम्हारा इंतजार करते होंगे। प्रज्ञा मायके चली गई। उसे लगता था जैसे जिंदगी कितनी अजीब है, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। प्रज्ञा के मायके में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक गई। राजेश की पत्नी कुसुम को जैसे हर वक्त ये इंतजार रहता था कि प्रज्ञा कब ससुराल वापस जाए। प्रज्ञा इस बात को कुछ कुछ अब समझने भी लगी थी। यूं तो ननद भाभी दोनों सहेलियां से कम न थी। कभी कभी कुसुम पूछ बैठती, दीदी विवेक जी कब लौट रहे हैं? प्रज्ञा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सोच में पड़ जाती कि ये घर मेरा भी तो है, या फिर मेरा घर सिर्फ पहले था अब नहीं। क्यों मुझे यह जवाब देने की जरूरत पड़ती है कि मैं यहां से कब जाऊंगी? क्यों ये सवाल मुझसे पूछा जाता है? कुसुम भाभी को क्या हक है मुझसे ये पूछने का? शायद यही दुनिया की रीत है। ओह, ये कैसी रीत है कि अपने ही माता पिता के घर आने के लिए एक तरफ इजाजत लेनी पड़ती है तो दूसरी तरफ वहां ठहरने पर जवाब भी देना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के बीच अब कुसुम और प्रज्ञा के बीच कुछ खटास सी पैदा होने लगी। प्रज्ञा मानो दोनों तरफ से पिस गई थी, थक गई थी लोगों के सवालों से। तभी एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या मैं हमेशा इन्हीं सवालों में उलझी रहूंगी? हमेशा विवेक से यूं ही पूछती रहूंगी कि तुम कब लौटोगे? सवालों में उलझे रहने से तो कहीं बेहतर है कि मैं जवाब की तलाश शुरू कर दूं। उसे पता चल चुका था कि रिश्ते भी मधुर तभी रह सकते हैं जब आपका अपना कोई वजूद हो, कोई पहचान हो। रिश्ते किसी के जीवन को परिभाषित नहीं करते, बल्कि उन रिश्तों में हमारी क्या अहमियत है, ये ज्यादा जरूरी बात है। प्रज्ञा ने मां से कहा, मां मैं सोचती हूं कि आगे की पढ़ाई फिर से क्यों ना शुरू कर दूं। मां ने कहा, बेटी अभी तो 2 साल पहले तेरी शादी हुई है, तुझे तो अभी अपनी गृहस्थी देखनी है, पढ़ाई लिखाई करने की तुझे क्या जरूरत है? नहीं मां, मैंने तय कर लिया है, मैं अब रुकूंगी नहीं। ये था प्रज्ञा का जवाब। हालांकि प्रज्ञा पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन आगे इस रास्ते पर चलना संघर्षपूर्ण ही था। खैर, संघर्ष से वह बिल्कुल नहीं घबराती थी। उसने ये भी तय कर लिया था कि विश्वविद्यालय के पास ही वह अपनी सहेलियों के साथ रहेगी, ताकि आने जाने में उसे सुविधा हो। पहले तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन प्रज्ञा ने समझाया, पापा इसमें बुराई ही क्या है, आने जाने में जो वक्त बर्बाद होगा उसे मैं पढ़ाई में लगा सकती हूँ। इस तरह उसने पिता को मना लिया। प्रज्ञा की पढ़ाई अच्छी तरह होने लगी। श्री सुबोध रंजन ने बेटी को आर्थिक सहायता देने में कोई कमी नहीं की थी। उन्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा विश्वास था। प्रज्ञा हर शनिवार को अपने घर भी आया करती थी। ससुराल में भी हमेशा फोन करती, सास ससुर का हालचाल पूछती रहती। लेकिन विवेक से उसने पूछना छोड़ दिया था कि वह कब लौटेगा। अब प्रज्ञा अपनी ही पहचान की तलाश में जुटी रहती। उसे अपनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के सपने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। उसने सवालों पर ध्यान देना छोड़ दिया था और जवाब ढूंढना सीख लिया था।

0: तो बहनों, ये थी आज की कहानी घर। हमें उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और ये बिल्कुल सच है कि अगर हम बेवजह के सवालों में ना उलझें, उसके बजाय समस्या का समाधान ढूंढें, तो हमारा जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। और आज शनिवार है बहनों, तो आपके पास फुर्सत तो थोड़ा अधिक होगा ही और दिनों के मुकाबले, तो आप अपने हॉबीज पर ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं और कहीं जा भी सकती हैं। तो आज संगीत सुनना या बागवानी करना, या आपको अगर घर में कुछ डेकोरेशन के सामान बनाना पसंद है, तो ये सब आप ज़रूर कर सकती हैं। इससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव को दूर कर सकती हैं। और जब हम अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देते हैं ना बहनों, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ नया किया, और ये हमारे जीवन से तनाव को कम करने में मदद करता है। और आने वाले सप्ताह के लिए ना, हम एक नए उत्साह से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और अब बातों बातों में वक्त हो चला है बहनों कि हम आपसे विदा लें। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। और अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखी निधि को। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए शैक्षिक प्रसारण। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा और प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार है कुमारी रीना प्रसाद। प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार हैं कुमारी रीना प्रसाद।
1: सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी भाषा का अभिन्न अंग है। भाषा नदी के जल के समान चलती और बहती रहती है। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के निर्माण में अहम और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। आज की चर्चा का विषय उपसर्ग और प्रत्यय है, तो सबसे पहले हम चार बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। पहला, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा। दूसरा, दोनों की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण। और अंततः, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। सबसे पहले उपसर्ग की चर्चा करते हुए, उपसर्ग शब्द दो शब्द से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट रखना और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात निकट रखकर नए शब्दों की सृष्टि करना ही उपसर्ग है। लेकिन परिभाषिक शब्द में हम कहें तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे कि एक शब्द है हार, जिसका अर्थ है पराजय या गले की माला, लेकिन इस शब्द के पहले कुछ शब्दांश लगा देने पर यह नया अर्थ विशिष्ट अर्थ देने लगता है। जैसे हार के पहले आ लगा दिया गया आहार, उसका अर्थ हुआ भोजन। हार के पहले प्र लगाया गया प्रहार, अर्थ हो गया चोट। हार के पहले वी लगाया गया विहार, भ्रमण। उसी प्रकार हार से पहले उप लगा दिया गया उपहार, जिसका अर्थ हुआ सौगात। हमने देखा कि हार शब्द मूल शब्द था, लेकिन उसके पूर्व कुछ शब्दांश अलग अलग शब्दांश के जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, उसका नया अर्थ निकलने लगता है। उपसर्ग की जब हम परिभाषा देते हैं तो उनमें से तीन विशेषताएं सामने निकल कर आती हैं। पहली, उपसर्ग शब्दांश है जो मूल शब्द के पहले लगता है। दूसरा, उपसर्ग लगने पर अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। जैसे बल के आगे प्र लगा दिया गया प्रबल, शासन के पहले अनु लगा दिया गया अनुशासन। उसी प्रकार उपसर्ग लगाने पर कभी कभी मूल शब्द के ठीक विपरीतार्थक शब्द का भी निर्माण हो जाता है। जैसे सत्य शब्द है, सत्य के पहले हमने अ लगा दिया, असत्य हो गया, जो सत्य का ठीक उल्टा है। उसी प्रकार यश के पहले हमने अप लगाया अपयश। चौथा विषय ये है कि उपसर्ग लगाने पर कभी कभी अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, वह मूल शब्द के अर्थ के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे शुद्ध के आगे हमने वी लगाया विशुद्ध, भ्रमण के पहले परी लगाया परिभ्रमण। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा विदेशज उपसर्ग, जिसे आगत भी कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं, उसे तत्सम भी कहा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। इसलिए जो उपसर्ग संस्कृत के हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसे अव, अव के साथ काश जोड़ दिया अवकाश, अवसर, अवधि। अति एक उपसर्ग है, अतिशय, अत्याचार। ऐसे संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है। जैसे आ, आ शब्द के साथ गमन जोड़ दिया आगमन, आ के साथ कार जोड़ दिया गया आकार। उसी प्रकार एक उपसर्ग है परा, परा के साथ जय जोड़ा पराजय, परा के साथ भव जोड़ा पराभव, नी के साथ निवारण निपात। तो संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा करने में 22 उपसर्गों की चर्चा करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग हमारे पास कहे जाते हैं कि 10 हैं, लेकिन प्रचलित अर्थों में उनकी संख्या उनसे कई बढ़ भी जाती है। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अन अन प्लस पढ़ अनपढ़, अन प्लस मोल अनमोल। ये अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। उसी प्रकार अन उपसर्ग है, मोल मूल शब्द है। भर एक उपसर्ग है, जैसे भर पूर भर पेट भर सक। बिन उपसर्ग है, बिन देखे बिन बोले। तीसरा उपसर्ग जो हिंदी में उपयोग में आता है वह है विदेशज उपसर्ग। विदेशज वो शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं। भाषा के निर्माण के प्रवाह में अनेक भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं। संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। और मुख्य रूप से जो उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं वह अरबी फारसी के ही होते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर हर से हर रोज हर घड़ी हर दफा, खुश खुशबू खुशहाल खुशखबरी, ना से नालायक नाजायज, हम हमदर्द हम सफर हम उम्र, बद बदतमीज बदबू इत्यादि। तो हमने देखा कि उपसर्ग जो है हमारे तीन प्रकार के हुए, संस्कृत के हिंदी के और विदेशी भाषाओं के, जिसे विदेशज भी कहा जाता है। हिंदी में कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे असुरक्षित अ प्लस सु प्लस रक्षित। यहाँ अ भी उपसर्ग है सु भी उपसर्ग है, रक्षित मूल शब्द है। उसी प्रकार निराकरण निर प्लस आ प्लस करण, निर भी उपसर्ग है आ भी उपसर्ग है करण भी उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमने देखा कि शब्दांश है, पहले लगता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। तीन प्रकार के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग और देशज और या आगत उपसर्ग। उसी प्रकार प्रत्यय की जब हम चर्चा करेंगे तो प्रत्यय भी शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है और प्रत्यय उपसर्ग के ठीक उल्टे शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय की परिभाषा यदि हम दें तो वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाता है। जैसे देव प्लस ई देवी, तेली प्लस इन तेलिन। हिंदी में प्रत्ययों की संख्या, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में आने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी वह शब्द जो क्रिया से बना हो और उसके अंत में यदि कोई शब्दांश लगाया जाता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया हम जानते हैं कि क्रिया का अर्थ होता है काम करना, जैसे संज्ञा का संज्ञा मतलब नाम, क्रिया मतलब काम। तो क्रिया के अंत में जो शब्द हम जोड़ते हैं, या शब्द नहीं कह सकते हैं शब्दांश जोड़ते हैं, तो वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे जिस शब्द का निर्माण होता है उस शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे पीना प्लस वाला पीने वाला, पढ़ना प्लस वाला पढ़ने वाला। उसी प्रकार जानना प्लस हार जाननहार, मिलना प्लस सार मिलनसार, लिख प्लस आ लिखा, खा प्लस या खाया, खाता। उसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय। क्रिया से भिन्न जो शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उनके अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनसे जो शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहते हैं तद्धितान। जैसे प्रभु शब्द के साथ हमने ता जोड़ा, नया शब्द बना प्रभुता। बच्चा शब्द के साथ पन जोड़ा, नया शब्द बना बचपन, ताजा प्लस गी ताजगी। तो हिंदी में जो भी शब्द सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है, उनके अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं और एक नया अर्थ लेकर आते हैं, वे नए शब्द के साथ प्रत्यय का योग होता है। हमने प्रत्यय की चर्चा की, हमने उपसर्ग की चर्चा की। अब दोनों के बीच क्या अंतर है या कैसे हम जाने कि दोनों अलग अलग अर्थ लेकर है, हम लोग उसकी चर्चा भी कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो मूल शब्द के पूर्व या पहले लगता है, और प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में लगता है। दूसरा, उपसर्ग लगने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी वह मूल शब्द के का विलोम भी हो जाता है। जैसे ज्ञानी के आगे हमने अ लगा दिया अज्ञानी, होश के आगे हमने वी लगा दिया बेहोश, लायक के आगे ना लगाया नालायक। प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के अर्थ में अल्प परिवर्तन होता है, वह अधिकांशतः मूल शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है, जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे अ शब्द लगाया तो अनिषेध का है, अज्ञानी जिसे ज्ञान नहीं है, लेकिन अपवादों को छोड़ दें तो प्रत्यय का कोई अलग विशेष अर्थ नहीं होता है। वो शब्द के साथ जुड़कर शब्द में एक नया परिवर्तन लाते हैं, लेकिन बहुत विशेष अंतर उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा की। हमने देखा कि शब्द निर्माण होता है तो उसमें आगे लगाने से भी नए शब्द बनते हैं और शब्दों के पीछे भी शब्दांश लगाने से नए शब्द बनते हैं। यदि हम लोग परीक्षा में आने वाले जो विषय होते हैं उसमें अधिकांश कोई उपसर्ग दिया रहता है और उससे कई शब्द बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह अभ्यास के द्वारा हम लोग उपसर्ग लेकर उससे नए नए शब्दों का गठन करें, पढ़ें। और उसी प्रकार प्रत्यय भी दिया होता है और प्रत्यय से नए शब्द बनाने होते हैं। कभी कभी शब्द दिया जाता है और उसमें से अलग प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है और उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाता है। तो हमने इसकी विशद चर्चा की है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।
0: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार थी कुमारी रीना प्रसाद। कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

अभी हम सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण, हम सुन रहे थे वार्ता, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार थी कुमारी रीना प्रसाद, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आज का शैक्षिक प्रसारण संपन्न हुआ।

आइए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये गाना जावेद अली के स्वर में। बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

0: और अब इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी

0: के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic

0: की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर, डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहिबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन, 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे ले जाने वाले सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुति क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गिरडी के भंडारी डीह की रहने वाली रजिया इस्लाम का कहना है कि गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने से जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
1: मेरा नाम रजिया इस्लाम, कोयला लकड़ी जलाते थे, अब जब से गैस मिला तब से खाना बना के दे देते हैं टिफिन जल्दी जल्दी करके, धुआं से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, अनाज मिलता है फ्री में, खाने पीने की सुविधा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ मिल गया।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
2: जब यहाँ के बच्चों का हक, यहाँ के बच्चों का अधिकार को जब छीन रहे हैं, लुटा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि उससे अपने आप को सरकार नहीं बच सकती। हमारे पास आज भी वो सारे दस्तावेज हैं। विधानसभा में भी मैंने विषय को उठाया था कि रिम्स में या झारखंड सरकार में कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
0: इधर भाजपा के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता का सरकार के काम पर विश्वास बढ़ गया है, जिससे भाजपा जानबूझकर राजनीति के तहत खामियां निकाल रही है।
3: हर जिला के सदर हॉस्पिटल हो या रेफरल अपने लोगों को भेजकर वहां का खामियां निकालता है, तो मैं डॉक्टर और सीएस को कहा हूं कि आप अपना एकदम मुस्तैदी के साथ रहिए और स्वार्थ को लेकर अगर राजनीतिक मुद्दा अगर बनाता है तो उसको बहिष्कार दीजिएगा। लोगों को विश्वास बढ़ गया है, आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, तो मिलना चाहिए ना।
0: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है, ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संताल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप

0: प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पक थाना क्षेत्र अंतर्गत बारलोंग क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु पर जिला प्रशासन ने संवेदना प्रकट की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रामगढ़ बोकारो की तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना के कारणों की बारीकी से आकलन किया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। BCCL अब खदान के गंदे पानी को प्यूरिफायर कर पीने योग्य बनाएगी और इसे कोल नीर के नाम से बॉटलिंग कर बाजार में उतारेगी। इसके लिए पुटकी बिलहरी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से BCCL के पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। BCCL CMD मनोज अग्रवाल ने बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक RO तकनीकी से शुद्ध कर पानी पीने योग्य बनाया जाएगा।
1: ये जल को सेलिंग करके यहाँ बनेगा, 30 जून तक ये चालू हो जाएगा। इसके लिए जो ये कार्य यहाँ हो रहा है, इस तरह का एक प्रथम कार्य पूरे BCCL में है, बल्कि प्रैक्टिकली पूरे CIL का उन्होंने भी बेस्ट और फर्स्ट प्लान करवा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइन वाटर कैसे यूटिलाइज किया गया।
0: हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बरकट्टा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अवैध शराब जब्त की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप की बिहार में तस्करी करने की योजना थी। उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी है। सिमडेगा जिले में पुलिस की दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
2: छापामारी गठन के बाद लगातार तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर अज्ञात महिला का शव पहचान ललित देवी के पिता विश्वनाथ बराय साकिन तोलेगीरा जिला सिंहदेव के रूप में भी है। आरोप मृतिका का मोबाइल, चप्पल, अभी का फोन बरामद हुआ। अनुसंधान के क्रम में घटना में संलिप्त आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मेरा युवा भारत साहेबगंज के तत्वावधान में महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन, उनके साहित्य के योगदान तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत यूथ क्लब के सदस्य को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में झारखंड फिल्म महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल पाठक और कुलपति प्रोफेसर जगन्नाथ चेकलिंगम ने किया। साथ ही महोत्सव स्मारिका चित्र पटल का लोकार्पण भी हुआ। देश भर में मिली 84 प्रविष्टियों में से चुनी गई 67 फिल्मों का 3 दिवसीय महोत्सव में प्रदर्शन होगा, जिनमें झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और स्थानीय प्रतिभाओं की झलक दिखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व MSME दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। DC और SP ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। NHAI अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहिबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे शोभा गुर्टू को। इनसे सबसे पहले सुनते हैं मिश्र पहाड़ी में ठुमरी, बोल है छोड़ो छोड़ो डगरिया।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे हैं शोभा गोटू को। आइए सुने राग मांझ खमाज में ये ठुमरी, बोल है अब कैसे धरूं धीर।

शोभा गुड्डू की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये ठुमरी राग मांझ खमाज में। और अब इसी के साथ हमारा आज का उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी समाप्त हुआ।

और अब ये वक्त है सुगम संगीत का। आज के सुगम संगीत में हम सुनेंगे चंद गजलें भूपिंदर और मिताली सिंह।

मिताली सिंह की स्वर में अभी हम ये गजल सुन रहे थे, इसे लिखा था मलिक गुमनाम ने। आइए सुनिए मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल, नसीम अजमेरी की लिखी हुई।

0: पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित

0: शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ

0: ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CUCI थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती, लेकिन उसके पहले ये शौर्य गाथा।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

आइए सुने फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती। सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म बोस अनफॉरगेटन हीरो का ये गाना। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

आयुष ने श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में फिल्म बर्फी का ये गाना। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे, संगीतकार प्रीतम।

माय नेम इज खान। आइए सुने इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म कसूर का ये गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। बोलों को लिखा है समीर ने और उन बोलों को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संथाल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता

0: साफ सफाई मेंटेन करें।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में भारत की उस सोच को रेखांकित किया गया है जिसके तहत वैश्विक दक्षिण को सुरक्षित, टिकाऊ और समान ऊर्जा भविष्य के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत ऊर्जा व्यवस्था केवल घरेलू नीतियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी बनती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने को लेकर टाटा स्टील फाउंडेशन नोवामुंडी द्वारा पहल की गई है। टाटा स्टील नोवामुंडी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के अधिकारी उदय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह पहल दिव्यांग बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ेगी। देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। एनएचएआई के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बताया गया कि इस मार्ग पर 45 किलोमीटर से अधिक लंबी फोर लेन परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे लाखों श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। धनबाद कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता संघ की ओर से आज सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता उदय भट्ट ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोर्ट कैंपस में शेड का निर्माण कराया गया था। उसी समय से हर वर्ष सुंदर पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
2: विगत 2 वर्ष से हम लोग इस कैंपस में सुंदर कांड का आयोजन कर रहे हैं। अमरेंद्र कुमार सहाय और सचिव जितेंद्र कुमार कुनी के सौजन्य से यहाँ पर कैंपस तैयार हुआ था। उसके बाद से लगातार हम लोग ये करते आ रहे हैं। सुंदर कांड के पाठ के बाद भोग वितरण होगा, खीर और खिचड़ी का व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
4: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
3: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

अनजान के बोलों को एक बार फिर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गुलशन बावरा की ये रचना, आर डी बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम है राम तेरे कितने नाम।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म धरती का ये गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गीत आइए सुने लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आयुषी ने फिल्म त्रिशूल का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, माफ कीजिएगा, ये गाना फिल्म कभी कभी का है। बोलो को लिखा है साहिर ने, धुन तैयार की है खयाम ने।

और आइए अब सुने फिल्म बड़े दिल वाला का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज की रांची मेलोडी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है। राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के निर्देश पर गुमला जिला कृषि विभाग द्वारा आज समाहरणालय परिसर से डिजिटल कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी शुभम प्रिया तीयू ने बताया कि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आज ट्रांसफार्मर लदे वाहन में आग लग गई, जिससे चार ट्रांसफार्मर और गाड़ी जलकर राख हो गई। वहीं वाहन चालक मिथिलेश कुमार ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। हजारीबाग के उकनी तालाब के प्रदूषित होने के कारण जलजीव मर रहे हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि सफाई टीम को ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया गया है। और देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं, आइए सुने कल्याणी। आज की कल्याणी में हम सुनेंगे ये चर्चा, अपने अच्छे पल को पहचाने और खुश रहें। एक भेंट वार्ता होगी, पारिवारिक विघटन और समाधान। भेंट वार्ताकार हैं झालसा के अपर सचिव निर्मल कुमार भारती और इनसे हमारी मुलाकात करवाएंगे संजीव कुमार लाल। एक और चर्चा हम सुनेंगे, बिगड़ती बात को बनाना भी एक कला है। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

0: नमस्कार, कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता। श्रोताओं, हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम में अपने समाज, अपने आसपास, अपने लोगों के साथ जो कुछ भी बातें होती है उस पे हम आपसे बातें करें, कुछ चर्चा करें, कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में प्रायः हर कोई हमेशा यही सोचता है कि हम कैसे कुछ ऐसा करें जिससे हम सब खुश रहें। खुशियां पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत धन दौलत हो, बहुत पैसे हो या फिर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी हो, तभी आप खुश रहेंगे। खुशी का राज बड़ी चीजों में नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे पलों को पहचानने जिसमें हमारा वर्तमान जीवन छिपा है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे पलों को पहचानते हैं तो यकीन मानिए हम बहुत खुश रह सकते हैं। सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए आप बहुत सारी बातें हैं जिसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। पल अच्छे बुरे हमेशा आते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे पल जो हमारे लिए हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हम उनमें अपना जीवन ऐसे जिए कि आगे आने वाला अगर कोई ऐसा पल है जहां हमें परेशानी हो सकती है तो उन अच्छे पलों के सहारे हम उस कठिन परिस्थितियों को पार कर सके। छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातों या पलों को याद करें जो आपके साथ हुए हैं। पूरे दिन में अगर कुछ अच्छी चीजें आपने की है या आपके साथ किसी ने की है तो सोने के पहले उन्हें थैंक्स जरूर बोले, उनके प्रति कृतज्ञता जरूर निभाएं और साथ ही साथ ईश्वर को भी याद करें कि हमें उन्होंने ये पल दिया है जो हमारे लिए बेहद खुशी का रहा है। साथ ही खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दे। आपकी खुशियाँ, आपका जीवन बिल्कुल आपका अपना है और आपका सफर बिल्कुल अनोखा है, ये बात याद रखे। किसी को देखकर उसके पीछे ना भागें बल्कि अपने जो गुण है उन्हें पहचानें और उन गुणों को निखार कर खुशियों के साथ अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाएं। अक्सर देखा गया है कि हम आज को छोड़कर भविष्य की चिंता करते हैं, यानी फ्यूचर प्लानिंग में ही रहते हैं कि आने वाले समय में हम ये कर लेंगे, हमारे साथ ये हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में फ्यूचर को लेकर चलती रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझने के बजाय जो आज आपके पास मोमेंट है, यानी जो क्षण है, पल है, उससे प्यार करना सीखे, उन पलों में जीना सीखिए। उन पल में आपके लिए क्या अच्छा है ये जानने की कोशिश करिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। देखिए, खुशियाँ आपके चारों ओर बिखरी नजर आएंगी और आप खुश रहेंगे। हम में से हर किसी ने अनुभव किया है कि जब हम पॉजिटिविटी अनुभव करते हैं तो हम बेहद खुश रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो नेगेटिविटी को अपने आसपास ना आने दें, नकारात्मकता के जो भी भाव है उन्हें हम अपने मन से निकाल दें और जो पॉजिटिविटी है यानी सकारात्मकता है उसे अनुभव करें और उसे खुलकर अपने जीवन में स्वीकार करें, तभी हम शांत मन से जीवन को जी पाएंगे और खुशियां हमारे लिए होंगी। साथ ही साथ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छूती हैं, दिल की भावनाओं में गहराई तक उतरती हैं, ऐसा कोई गहन विचार, अनुभव भी हो सकता है जो हमारे मन को सुकून और प्रेरणा देता है, जिससे मन की शांति या सीख मिलती है। हमेशा यह विश्वास रखे कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ईगो के कारण बहुमूल्य रिश्ते भी खो देते हैं, तो ऐसे चीजों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे पल हैं उनमें हम जिए और उनसे प्रेरणा लें। साथ ही कोशिश यह करें कि हमारी ये कोशिश किसी और के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। किसी को संतावना देना, कोई गहरा सत्य समझाना भी दिल को छू लेने वाली बातें हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे विचार हमें अंदर से झकझोर देते हैं, हम कभी उदासी या तन्हाई में घिर जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन बातों से खुद को बाहर निकालें और कोशिश ये करें कि हम खुशियों के साथ अच्छे से अपना जीवन जी पाए। अच्छे बुरे पल हमेशा आते हैं जीवन में, तो उन पलों को संजो कर, संभाल कर, अपना कर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में खुशियां बिखेरे। जीवन के बेहतरीन पल वो होते हैं जब हमारा मन शांत और सकारात्मकता होता है। खुश रहने और अच्छे पलों को पहचानने के लिए वर्तमान में जीना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढें। खुद की तुलना किसी से ना करें। अपने आप से जुड़े, देखें वर्तमान में कौन सी खुशी आप महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों में आप अपनी बहुत बड़ी खुशियां ढूंढ सकते हैं। सुबह की धूप, किसी की मुस्कान, चाय की चुस्की, जैसे छोटे छोटे साधारण पल है ना, उसमें भी हमें खुशियां मिलती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अतीत के पछतावे को भूलकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में जिए और खुश रहें। लोगों की तारीफ करें, दयालुता दिखाएं, लोगों की तारीफ करें, दयालुता दिखाएं और सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भर लें। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें पीछे ढकेल सकती है। ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जो काम आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें और खुशियों के साथ अच्छे पल में जिए। कोशिश करें आपके जीवन का हर पल खुशियों भरा हो। श्रोताओं, ये तो सही में बहुत जरूरी है कि हम अपने अच्छे पलों को पहचान कर उसमें खुश रहने की कोशिश करें। साथ ही साथ जरूरी है कि परिवार में भी खुशियां बिखेरे रहे। परिवार में खुशियां इसलिए भी जरूरी है कि आज के वर्तमान दौर में अक्सर हमने ये देखा है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले जहां संयुक्त परिवार होता था, आज उसने एकल परिवार का रूप ले लिया है। दिन प्रतिदिन परिवार में विघटन होता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों होता है पारिवारिक विघटन और इसके समाधान क्या है, इस विषय पर भी सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपर सचिव झालसा के निर्मल कुमार भारती जी को, जिनसे हम बातें करेंगे पारिवारिक विघटन और समाधान। उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है और इस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी और बच्चे, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आजकल की वर्तमान स्थिति में हम एकल परिवार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं, एकल परिवार में आ गए हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग खत्म हो चुकी है और इस न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारी परेशानियां भी जन्म लेने लग गई है। जब परिवार का निर्माण होता है तो एक सभी लोग उसमें जुटते हैं और बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। लेकिन यही परिवार जब विघटन के कगार पर आ जाता है तो इससे सबकी क्षति होती है। परिवार बनता है, शादी ब्याह होते हैं और कुछ दिनों के बाद बहुत सारी संकटें आने लग जाती हैं और फिर आप जानते हैं आजकल तलाक का दौर चल पड़ा है। लोग अर्जी दाखिल कर जाते हैं और परिवार अलग हो जाता है और इसमें परिवार संवेदना का शिकार हो जाता है, अवसाद से घिर जाता है और फिर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आखिर ये पारिवारिक विघटन क्यों हो रहा है, क्या कारण है और इसका समाधान हम कैसे निकालें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार भारती जी। भारती जी स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: भारती जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार में तनाव, विघटन, अवसाद बहुत देखने को मिल रहा है, क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं?
2: देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसर हो चुके हैं। भारत में जो कि संयुक्त परिवार के लिए जानी जाती थी हमारी पारिवारिक व्यवस्था, आज एकल परिवार के रूप में हम लोग आने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि रोजी रोजगार के तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकने लगे हैं। आज न सिर्फ हमारा देश, हमारा राज्य, बल्कि समूची दुनिया ही सिकुड़ चुकी है और पूरी दुनिया इतनी नज़दीक हो गई है कि यहाँ से सात समंदर पार भी अगर हमें जाना है तो 24 घंटे 26 घंटे में हम पहुँच जा रहे हैं। इसी वजह से लोग जो है अपने जन्मभूमि से, अपने स्थान से दूर होने लगे, अपने सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों को दरकिनार करके रोजी कमाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और यह मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक विघटन का। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में देखें और ये देखें तो सबसे मुख्य कारण है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो उनमें मानवीय संवेदना के जगह पर अधिक अपना अधिकार पाने की इच्छा शक्ति जो है

0: ये प्रबल हो जाती है। यहाँ लोग भूल जाते हैं कि समाज के प्रति और संयुक्त परिवार के प्रति उसके क्या कर्तव्य थे, बल्कि लालच में पड़कर वह संपत्ति को अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने के लिए अग्रसर होने लगते हैं और इस तरह से कानूनी समस्याएं जन्म होती है। जो परिवार की मिलजुल कर रहता था वहाँ पर हम संपत्ति अधिक से अधिक अर्जित करने के चक्कर में पारिवारिक मूल्य त्यागते हैं और पारिवारिक विघटन होता है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तलाक के मामले भी बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे एकल परिवार ही है, क्योंकि जब लोग एकल परिवार में रहते हैं तो वहां पति पत्नी और बच्चे ही हैं। कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के जो मेंटल स्टेटस होता है वह अंतर लिए हुए होता है। कई बार उम्र में फासला होता है, कई बार पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो एक दूसरे के संवेदनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और परिवार जो होता था, हमारा संयुक्त परिवार जो होता था, वह सेफ्टी वाल्व के तरह काम करता था। पति अगर अवसाद में है, चिंता में है, परेशानी में है, तो परिवार के दूसरे लोग उसे कम कंट्रोल करते थे ताकि पति पत्नी में, बच्चों में, आपस में सामंजस्य बना रहे। पत्नी अगर टेंशन में रहती थी तो परिवार के दूसरे लोग उसे सहयोग करते थे। अब दूसरे लोग सहयोग करने के लिए नहीं है, इसका नतीजा यह होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और इससे तलाक और दूसरी कानूनी समस्याएं आती हैं। बच्चों में संस्कार घटते चले जाते हैं। हम अपने दादा दादी चाचा चाची के गोद में पले बढ़े लोग हैं और आज जो है हमारे बच्चे उस सब चीज से महरूम होते जा रहे हैं, तो उसका नतीजा यह होता है कि बच्चे में जो संस्कार आने चाहिए वह नहीं आ पाता है और पारिवारिक विघटन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। यही सब मुख्य कारण है मेरे हिसाब से।
1: हम समय की रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक सामंजस्य स्थापित करने में हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दूसरे को सम्मान देना, उसका ख्याल रखना, उसकी भावनाओं को कद करना, ये जहाँ हम भूल जाएंगे, इससे यदि हम किनारा कर लेंगे तो फिर समस्याएं धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर वो विघटन या टकराव का रूप धारण कर लेता है। फिर जब समस्याएं विकराल होने लगती है, जटिलताएं आने लगती है, तो फिर कानूनी समस्या आ जाती है, लोग कानून का सहारा लेते हैं, और सिर्फ कानून के सहारे से ही हम इसका बचाव नहीं कर सकते। हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को वापस लाना होगा और एक सोच और समझ के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्मल जी, समस्याएं वहां उत्पन्न होती है, कई जगह समस्याएं वहां उत्पन्न होती है जब इस रिश्ते में तीसरा व्यक्ति कूद पड़ता है। वो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपनी बात वहां रखने की कोशिश करता है, परिवार का तीसरा व्यक्ति आ जाता है और मामले में आग लगाने की कोशिश करने लग जाता है। ये आजकल काफी देखने को मिल जा रहा है।
0: देखिए, खास करके पारिवारिक मामलों में, जहां पर कि पति पत्नी के बीच में, जब पति पत्नी एकल परिवार के रूप में रह रहे हों और वहां पर इंटरफेरेंस पत्नी के मायके वालों का या पति के परिवार वालों का होता है, जो लोग कि वहां नहीं रह रहे हैं और चूंकि वे अपनी बहू के साथ नहीं रहे हैं, वे अपने दामाद के साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भावनाओं को समझे बिना अपनी बेटी को या अपने बेटे को, अपने भाई को या अपनी बहन को जब अपने हिसाब से उनके अंदर विचारों का पुट करने लगते हैं, तो वैसे में जो है पति पत्नी के बीच आपस का रिश्ता खराब होता है। लेकिन जब यही हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो यही लोग वे होते थे जो कि परिवार को बचाने का काम करते थे। एक्चुअली वे झगड़ा लगाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि बस अपने विचारों को अगले के विचारों को जाने बिना डालते हैं, इसीलिए पारिवारिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है।
1: जी, जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: समाज में भी गलत संदेश जाता है, तो क्या क्या इसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर देखने को मिल जाता है?
0: जैसा कि आपने कहा कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, देखिए, जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों और घर में शांति का माहौल नहीं रहे, तो ऐसे में बच्चे अपने पारिवारिक मूल्यों से दूर होते चले जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो बच्चे होते हैं वे गलत संगत में पड़ जाते हैं। माता पिता दोनों घर में नहीं है और जब घर में है तो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे जो है कई बार अपने उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ, ज्यादा उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं और उनका बचपन समाप्त हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि इसके चलते हुए अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, उनमें असंवेदनशीलता की भावना आ जाती है, वे बचपन से अवसादग्रस्त रहने लगते हैं, डर की भावना आ जाती है और कुल मिलाकर इस तरह से राष्ट्र को एक स्वस्थ मनुष्य जो कि आज का बच्चा बड़ा होकर बनेगा वह नहीं मिल पाता है।
1: लोग अवसादित हो जाते हैं और परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, परिवार का विकास

0: तो वहीं का वहीं रह जाता है। इस समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए, निर्मल जी, कैसे एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे एक दूसरे के भावनाओं को कद्र किया जाए और कैसे बच्चों में एक संस्कार के बीज हम डालें।
1: देखिए, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर कि हमारे पौराणिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी का हरण को से निकालने के लिए समुद्र पार लंका चले गए थे। आज हम अपनी पत्नी को समझ नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें थोड़ा पीछे मुड़ना होगा। और जैसा कि हम कहे, आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप यह जाने कि जब आपकी रफ्तार बहुत तेज होगी तो आपके जूते घिसेंगे। और यह जूता घिसना कहने का मतलब यह है कि आपके पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होगा। तो हम अपनी विकास की रफ्तार में इतनी तेजी से ना दौड़े कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ दें, बल्कि अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ हम अपना विकास करते चलें। और जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसे यथासंभव लेते हुए हम आगे बढ़े, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके।
0: जी, हमारे एक कहावत भी है, वसुधैव कुटुंबकम। यदि इस अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे संस्कारों के साथ यदि हम एक जीवन यापन करते हैं और थोड़ा सा हम यदि विराम देते हैं अपनी रफ्तार भरी जिंदगी में, तो फिर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी।
1: विराम तो बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन है क्या, हम अंधे दौड़ में इस तरह से पागल ना हो जाएं कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ते चले जाएं। और दुनिया को तो हम कुटुंब बाद में बनाएं, पहले अपने कुटुंब को ही अपने साथ लेकर विकास के लिए चले। अगर मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे, हमारा इनकम हो गया है और बगल में हमारा भाई इतना नहीं कमा पा रहा है कि उसके घर का चूल्हा जल रहा है, तो क्या ये विकास है मेरे लिए? यह मेरे लिए विकास नहीं है, बल्कि हम दोनों भाई अगर एक साथ विकास करते चले जाएं तो वही विकास है। तो जब हम भाई के साथ विकास करेंगे, जब अपने बहन के साथ विकास करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ विकास करेंगे, तभी हमारा विकास जो है अस्थाई और सतत माना जाएगा।
0: क्या कहेंगे आज के लोगों को, खासकर आज की युवा पीढ़ी को, आप क्या कहेंगे कि आप इस तरह की वातावरण यदि आपको दिखता है तो आपको थोड़ी सी अपने आप में विचार उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको एक नए विचारों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मन में संयम रखना पड़ेगा और हर व्यक्ति को समान रूप से आदर देना होगा।
1: मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अगर पारिवारिक मूल्यों को बचाना है तो हमें और हमारे युवा पीढ़ी को सबसे पहले है कि अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, सहनशील बनना होगा। जब तक हम सहनशील नहीं बनेंगे तब तक हम पारिवारिक मूल्यों को नहीं बचा सकेंगे और हमारा समाज जो है बिखरता चला जाएगा।
0: पहले बहुत सारी सीख हमें घरों में मिल जाया करती थी, नानी दादी की कहानियाँ होती थी और उस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते थे, वो अब लुप्त हो गई है।
1: तो यह तो तभी हो सकेगा जब हम अपने नानी दादी के साथ रहें।
0: तो सभी के साथ अच्छे पल गुजारने की कोशिश कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दादा दादी, मामा मामी, अपने सभी सगे संबंधियों के साथ। हम यदि अच्छे रिश्ते रखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और वो दिन अब नहीं देखने को मिलते हैं जब छुट्टियां होती थी तो लोग अपने दादा और नानी के यहाँ जाते थे।
1: देखिए, मैं
0: बहुत
1: तो
0: कुछ सीखते
1: मैं
0: थे।
1: तो यही कहूँगा कि थोड़ा अगर हम अपने सोशल मीडिया से बस दूर हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा समाज ज़्यादा स्टेबल होने की स्थिति में आ जाएगी।
0: जी,
1: तो बस थोड़ा अपने मोबाइल और इंटरनेट को थोड़ा दूर रख दीजिए, आपका समाज और परिवार जो है तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेगा।
0: साथ बैठिए, साथ मिलिए, बातें कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक वक्त का खाना हम साथ खाएं, तो बहुत सारी गलतफहमियां खुद ब खुद ही दूर हो जाती है और फिर हम एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करते हैं। और जब स्वस्थ परिवार का हम निर्माण करते हैं तब भी हमारा देश तरक्की के राह पर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पारिवारिक विघटन और समाधान, इस विषय पर अभी आप संजीव कुमार लाल से अपर सचिव झालसा के श्री निर्मल कुमार भारती जी की बातचीत सुन रहे थे। श्रोताओं, कल्याणी कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि यह कार्यक्रम आपके दिल तक पहुंचे और आप इसके जरिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। और फिलहाल इतनी बातें हो गई हैं तो एक खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिर आगे की बातें आपसे करेंगे।

श्रोताओं, गीत के बाद थोड़ी सी बातें हम आपसे और करना चाहेंगे। अक्सर आप और हम, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी किसी बातों से कोई बात बिगड़ गई है, या किसी को ठेस पहुंची है, या किसी दिल को तकलीफ हुई है, या परिवार में कोई मनमुटाव आया है, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि अगर हमारी बात से कुछ बिगड़ गया है तो उसे हम बना लें, सुधार लें। यह भी एक कला है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमें धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण

0: अपनाना होगा। बिगड़े हुए रिश्तों या परिस्थितियों को संभालने के लिए कूटनीति और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, न कि गुस्से और जिद से। बिगड़ती बात को बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर जरूर करना चाहेंगे। सबसे जरूरी यह है कि अगर किसी के साथ हमारी बात बिगड़ गई है या घर परिवार समाज में भी कहीं कोई बात बिगड़ रही है तो सामने बैठकर बातें करें। सामने वाले की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने ताकि मूल समस्या समझ में आ सके। कहते हैं ना कि अगर संयम से किसी भी बात को या किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए या बातचीत किया जाए तो कितने भी बिगड़े रिश्ते क्यों ना हो हम सुधार सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से बात बिगड़ गई है तो जीवन में सकारात्मकता लाए। समस्या पर रोने धोने के बजाय, समस्या पर दुख मनाने के बजाय कोशिश यह करनी चाहिए कि उस समस्या का समाधान हम किस तरह करें। अगर आप किसी खास परिस्थिति में बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है आप संवाद स्थापित करने। बातचीत करना पहला कदम होता है। संवाद स्थापित करने से ये होगा कि हमारे जो रिश्ते हैं, बिगड़ती हुई बात है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है ना कि समझदारी से अगर किसी बात को सुलझा लिया जाए तो वो समस्या बहुत आसान होती है। और बात छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती है तो इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात जो हमारे जीवन में समस्या ला रही है या किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे जाकर सॉरी बोले, माफी मांग ले। अगर हमारी गलती है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, माफी मांग ले। साथ ही आप ये भी बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने ये बातें उनसे कही है। प्रायः आज के दौर में जब लोग बिल्कुल भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कभी कभी बात बिगड़ जाती है। तो बोलने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें क्योंकि बहुत मुश्किल से परिवार, दोस्त, रिश्ते बनते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी किसी भी बात से किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हमारी बात ना बिगड़े। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर दोनों ही गलत हैं तो आपस में दोनों एक के साथ बैठकर बातें कर ले, समस्या बिल्कुल ही आसानी से निपट जाएगी। कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई कहीं तकलीफ नहीं होगी और जो बिगड़ती हुई बात है ना वो आसानी से बन जाएगी। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा है आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचे। कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल्याणी के इस अंक से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही संजीव कुमार लाल की।
1: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें।

से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। युवाणी में आज के लिए चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन। आप सुनेंगे रोचक तथ्य, समसामयिकी और फिल्म संगीत। श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक संध्या 5:30 पर। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय है सामूहिक योग से सामाजिक समरसता का क्षमा करेंगे सामाजिक समरसता और उत्तम स्वास्थ्य। मेहनत की कमाई सुरक्षित पाई पाई, श्रमिक भाइयों के लिए आर्थिक योजना का महत्व। छोटे उद्योग बड़ी उड़ान, एमएसएमई सेक्टर में नवाचार और रोजगार।

सुनेंगे वार्ता सशक्त श्रमिक समृद्ध एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। वार्ताकार हैं किरण कुमारी सिन्हा। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:02 पर। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना महापात्रा जानकारी देंगी लेमन ग्रास की खेती और मूल्य संवर्धन के अवसर के संबंध में। 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी जल सुरक्षा भविष्य की रक्षा। 7:15 पर हो लोकगीत कलाकार होंगे कृष्णा हुमरम और साथी। 7:20 से आप सुनेंगे क्रमशः नागपुरी उरांव मुंडारी हो और संथाली भाषा में क्षेत्रीय समाचार। समाचार ध्वनि चित्र इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 7:45। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में रात्रि 8:00। 8:30 पर सुर्खियों में 8:45 पर समाचार संध्या रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 9:15 पर उर्दू में समाचार। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुना करते हैं आज के दिन यानी शनिवार को रात्रि 9:30 पर। 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कर्ज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म शान में आशा भोसले और पंकज उधास को। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव वर्मन का।

कि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना?

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं। फिल्म नसीब का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत पैलाल का।

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था, फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने ये चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

0: फिल्म डॉन के इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत बीएलओ को लौटा दें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज मीडिया से संवाद करेंगे। उनकी प्रेस वार्ता शाम 5:45 मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में होगी। आज रांची एयरपोर्ट पर श्री अठावले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड के मजदूरों, महिलाओं, नौजवान, किसान और बेरोजगार के लिए वे काम करेंगे। पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर में आज मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 55 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं 15,15,580 रुपए पर समझौता हुआ। लोक अदालत में उत्पाद विभाग को 2,57,750 रुपए और वन विभाग को 1,40,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। देवघर में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर आज खूंटी थाना के निकट सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर एमवीआई शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी काटा गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी जैविक खाद कैसे बनाएं और इसका उपयोग। होलो गीत सुनिएगा शकुंतला जामुदा और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी उन्नत किस्म धान के बिचड़े कैसे रोपे। भेंटवार्ताकार होंगे ब्लास्टर पूर्ति और इनसे बातें करेंगे डोबरो बुड़ियोली। उड़िया लोकगीत होगा दिलीप निषाद और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आशा मनी गोप और डोबरो बुड़ियोली। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। छह बजकर 2 मिनट पर सुनिए बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर होगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। चर्चा होगी मलेरिया से बचाव ही सुरक्षा है। जानकारी सुनिए दो बूंद जिंदगी के लिए

6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद। आठ बजे होगा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में, और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म 14वीं का चांद। इस फिल्म से गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

अभी आपने सुना फिल्म वक्त का ये नगमा, आवाज़ें थी आशा भोसले और महेंद्र कपूर की, और यही सुनते फिल्म हिमालय की गोद में। गायक लगा रहे हैं लता मंगेशकर।

0: अभी आपने सुना फिल्म जवक का ये नगमा, आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
0: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते फिल्म अभिमान का ये नगमा, आवाजें लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोता सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनीगोप और
1: डोबरो बोडेलतकिन पाते जोहार।
0: आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। डोबरो जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: अब नैन चासी अकड़ारे इसो सिविल दारोम सिविल जोहार गे चिलके में ना बना आशा जी ना दो तिसिंगे चास अकड़ारे आला चास हागिया को इसो बुगिन बुगिन सिया जगह को लांग जगह रखुआ चास बास रिया जोका जोका नो आशा जी जोका इन्हें हासु बाव तही के तही के ना कू मादा को चिकना मनते ची मिसे गमाए तना तरपा का एक गमाए तना तरपा जेटे तना इसु उगुम उगुम लोलो लोलो ना आओ मीना आगे।
0: बिल्कुल डोबरो जी, बिल्कुल डोबरो जी, कभी गर्मी लग रहा है तो कभी धूप, इस तरह से मौसम में बदलाव हम देख ही रहे हैं और इसमें हमारी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। डोबरो जी, इन दिनों हमारे किसान भाई बहन खरीफ फसलों में धान की फसल की खेती में लगे हुए हैं। इसकी बुवाई का कार्य भी चल रहा है और कहीं कहीं इसकी खेत की तैयारी भी चल रही है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहन खेती के साथ साथ खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई बहन अगर जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है खेत के लिए। डोबरो जी, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि में खाद का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसी भी अच्छी फसल की पैदावार के लिए खाद का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना खाद के हम किसी भी फसल की अच्छी पैदावार नहीं कर सकते हैं। खाद जितनी अच्छी होगी फसल भी उतना अच्छा होगा। अगर हम जैविक खाद की बात करें तो जैविक खाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली खाद है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों से सड़ने गलने से बनती है। इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद, ये सब शामिल है। डोबरो जी, अगर हम गोबर खाद की बात करते तो गोबर खाद पशुओं के गोबर से तैयार होने वाली यह खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती है।
1: ऐसो सारे का जी चाशा गया को आबू अपना घुरी बुदर को में ना अपना उरी को जम के थे तसट को किले मिले तसट को जम लेते अको को ना जो घुरी को एमाबू तने इने ना इसु गुनेन बुदर तना नेन बुदर ते के आबू ए ओते हसा सी पैक सी भी और के तो कुन जाना बु चास या इना बु बुदरे या इन बुदर ते उकना होबना इना इसु बुगिन जिनिस तने अंडो इनरिया ते जाना बाबा रियो आ उतरियो भिंगा मलची रियो कोना बु चास या नेने ते इसु बुगिले कते होबना मेंदो नेना को ना कोमो तना चास गया को एनरियो गेमर नेलेकन बुदर को बाइके ते अब चास पास बु बुगिले कर तो बाय री लेकिन अब गुरी बुदर रिया बुदर को के बु पाइट्रिब अगुजु इचे अंडो बुगिन पनाई ट्रिप अगुजु इके अंडो एनरिया लापा बु नमेका जुड़ूर अब कंपोस्ट बुदर बु मनी अच्छे गुरी बुदर नेने ते बा जो सोबेना इसु बुगिले का आ तो इसु बुगिले का ना हुबाना इनामंते नेन बुदर ना ओ नेन बुदर रिया गुनो अंडो मनोत मरंग जिनिस तने निया का बुबागी है।
0: बिल्कुल डोबरो जी, और इस खाद के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और जो पोषक तत्व है वो लंबे समय तक बने रहते हैं। और जैविक खाद के प्रयोग से जो मिट्टी है वो स्वस्थ बनी रहती है और इससे पौधों का विकास भी है वो तेजी से होता है। इस खाद के प्रयोग से सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जो पौधों को रोगों से बचाती है।
1: सरिका जी, नैन अब गुरी बुदरते जा चिमिन सिरमा ओगे अब हसा का खराब हुआ ब्रंच ओंडोगे एन कुंडी रिया ओते रिया हसा ओंडोगे बुगिन गे बही हुआ।
0: बिल्कुल डोबरो जी, और हमारे किसान भाई बहन यह ध्यान रखे कि रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे इसमें कमी आ जाती है और जो पोषक तत्व है वो भी इसमें कमी आ जाती है। डोबरो जी, इस चर्चा के बाद अब हम सुनते हैं ये संदेश।
2: यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी, लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं हो लोकगीत का।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं उन्नत किस्म धान की बिछड़े कैसे रोपे। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं ब्लास्टर पूर्ति और उनसे बातचीत कर रहे हैं डोबरो बुड़ियोली।
5: तिसिंग अबेना हतो तांत नगर पीढ़ी जुम्बला ची प्रखंड मेनाते अंगरडी हतुरे लिंग अबिटाना आकाशवाणी चाय भाषा कार्यक्रम किसान बाणी पैते चिरगेल अटकर हुबायना ची अबेन मेंडो उन्नशील चासी होड़ो तनाबेन किसान तनाबेन इनामेंते तिसिंग अबेन लोते उन्नत किस्म की धान की बिचड़े को कैसे रोपें मीना भी शहर है बेपटा चपगर लगे लिंग हुजुक ने एनते चास गया कि आबेना नुतुम डगर को ना बेन कजी आरले रदो विषय ओडों रिलंग जागर एनते आबेना उपरुम को ना बेन जागर तरदो एसुबुगी ने जो हर गे
6: अलिंग नुतुम दो ब्लास्टर पूर्ति हातुर दो हिंदू पूर्ति को मतलिंग
5: या
6: हातु दो अंगारडीए प्रखंड दो तांत नगर उंडो पंचायत तो अंगारडीए पंचायत के पोस्ट ऑफिस दो केड़ी टंगर
5: एसो रांसर या काजी ब्लास्टर पूर्ति ची इंदू पूर्ति तकिन अबेन अबेन आउ नुरुम कोकिन जगर केडा एनर दो उन्नत किस्म रिया बाबा पड़ा चिलके रुवायत या बुगिन है निया विषय रे अबेन मेंडो उन्नत सील की शांतना बेन चासी ओड़तना बेन नेन विषय रे होनंग ऐसो बुगिल का सिया जगर को बेन जगर तर जगरल रदे सुबुगी वा
6: हां ठीक गया जान चास रियो बाबा गे बाबा चास उन्नत किस्म चास चे जान चास रियो इंत सबसे पहले दो अबू फरवरी मार्च अप्रैल रे जो गमाया है इन सबिन होते आ सको सी खेत को रेडी ठीक थे उसके बाद गुरी बुदर को सिमी बुदर को इन्हें ते ओंडो ओंडो इटा बिटर को जो

0: को प्रताप उधर को एम के को रेडी टिक ते को पलटी ते
1: या
0: उसके बाद पड़ा दो नैन बाबा दो उन्नत किस्म बाबा दो रो रे दो काको पड़ाया
1: या
0: लोसम रे को पड़ाया जो कि जुलाई रिया ताक ते को पड़ाया एंते लास्ट जुलाई तक रे को पड़ाया जैसे मौसम मिया ए निसेप ते को पड़ाया यदि नैने लेखा यदि मौसम साथ का मबुर दो इन पड़ाओ ताक रे को पड़ाया अंडो ताक रे के करवाया जैसे चार टू सकामियन रे दो अबुए 15 दिन होबावा उसके बाद 21 दिन भीतर रे को रोवा चबाया निना दो
1: या
0: 21 दिन भीतर रे को रोवा चबा के ते इन्हें ते दा दो हिसब के को जुगाया हिसब के को जुगाया चिलके चिलके जुका जुका ते हरा इडवा इनका जुका जुका ते को तपा फिर या
1: अच्छा गामा को का हुआ और दो दा को का नाम और दो पड़ा तीर के ना दो ना चिलके ते हुआ समय दो सेनो इदिए
0: अच्छा अब दो ना दो नहार एरिए को तो कहा था ना आपको तो नहार एरिए रे दो पड़ा हरा यान तो ठकर वाया अंडो जादी अब इंता रे जान दे डीप बोरिंग को मिना या बांदा को मिना आ इन दो इना कोई तो को पटाई के ते ते ताक रेगे 21 दिन भीतर रिकोर वाचा बाय का
1: गड़ा कुटी को या
0: बांदा कुटी करे गड़ा कुटी करे गड़ा कुटी को ते दो ऐसे जोर को सुविधा हुआ अंडो डीप बोरिंग ते ऐसे जोर को सुविधा हुआ बांदा कुटी को ते दो ऐसे जोर को सुविधा हुआ इनते इन इनका के को पार्टी का ओकोयो का को नुकसान हुआ ऐसे जोर लापा को नमिया
1: अच्छा नन रे चिलिकन बुधर को एमते हुबा जकनो इनन काजी के लेकर रियो गे जान लगन दिखु बुधर को ढाई यूरिया ची फास्फेट को मिल लेका एना जाना को एम दुरकर छी कागे
0: एना दुरकरा डाई जब को लसड़े तन रे के डाई दको आरत को हरता तक लसर मिसर गात का अच्छा सिमी को अगुये इनाओ को लसर मिसित का गुरी दो जटा सिंह रिको एम तडा अबुए बाबा होबा गया
1: अच्छा नेन बाबा को रे जान लेकन चाहे चपिली छिदु को रखा बाको जमिया को एना तो चिलकन अब अदिसी रेते रेड रे इनेते बु हरदो दइए
0: अब एनन भीतर मिना कोवा जब गले ओतन रे अब बाबा दुबुआ एंदि पिलन इनको मिता कोवा को ए को इनको गोजो लगी दो लिमका ढोलका को हेरिया इनते को गोजोआ इनेते इनेते पोटास को एमिया ये रासायनिक खाद रे पोटास को एमिया इनेते डाइयो को एम रगात कर वतन दो लसन मिसर गात का को
1: अच्छा निन उन्नत किस्म रिया बाबा पड़ा चिलिकन ओते को रे दोन एक के दोन दो दोन तीन मिल के अब ओते को दो ना दो नुतुम सकी के ने इन दो ना दो आदान गया दोन एक दो बेड़ा ओते दोन दो दो जुका चितन
0: चितन ओते
1: इन दो दोन एक को रे बु बेड़ा ओते को रे बो और वाय लगे दो इना दो रुआ हो गया इन दो ओंडो चिली के दोन दो करियो ना रुआ दई ओची का गे जुका नो डिपेन ओते
0: दोन दो रियो मिना तारा दो झरना ओते को मिना दोन एक दो एक तन गया इनते इना दो नवंबर रे मतावतिया 150 दिन वाला बाबा को रोवाया उन्नत किस्म बाबा इने ते मध्यम साइड वाला दन दूर को रोवाया इने ते ओंडो पीर ओंडो एन ओंडो गे ओंडो इन चितन रे बाबा जो लार बाबा इना दो इन चनाप ते को पढ़ाया
1: अच्छा
0: जब जब पढ़ाबो रोवाया चा निमिन कोय दो गेल बंदिरिया मिना कोय दो इसी बंदिरिया मिना जब जब को रोवाया मिस ते आलोका को पढ़ाए आयर चनाब को पढ़ाए का चिन्ह में तो मिसे को पढ़ाए रो रोआ रोआ ते के चना बाबा बादो हाम हुआ हाम और दो इनी का संगी हुआ पूरे कतो का बाई हुआ
1: अच्छा पूर्ति तकिंग अबेन नियाव का जी बेन अबेन नें जोरों दो चिलकेन बाबा को बेन चास हुआ कड़ा
0: अलग तो ना दो हाइब्रिड बाबा को कुलिंग चास तरा दोन एक रे उसके बाद दोन दूरे ना हाइब्रिड बाबा के मध्यम साइड वाला जो कि अलिंग 120 दिन वाला लिंग रोआ कड़ा ओंडो मिडो 90 दिन वाला लिंग पढ़ा कड़ा ने ना तसिंग ये तलिंग शुरू कड़ा
1: या या
0: हाँ
1: इन्द्र दो नैन रे अबेन ओते को दो उरी किड़ा को तबेन लोसड़ा कड़ा ची चिन ट्रैक्टर को ते
0: साबिन ओते ट्रैक्टर तलिंग सी के तलिंग लटू उतने ओंडो बुधार कोलिंग एम के तलिंग रेडी ठीक तड़े इन्हें ते गमारे यार असरारे मिना लिंग्या का गमा का गमा तंते ना तो मशीन तलिंग पटाई तने ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱛᱮ ᱯᱟᱴᱟᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱚᱣᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱡᱮ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
4: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आशामणि गोपाल
5: डोबरो बुढ़िल की पैते
4: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत बीएलओ को लौटा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। इस दौरान 0 से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3893 बूथ बनाए गए हैं। रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2 नाबालिग मौसेरी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुशील उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2024 में रांची के मांडर थाना क्षेत्र में हुई वारदात के मामले में सुनाया गया। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम उप कारागार खूंटी में और दूसरा बाल देखरेख संस्थान सीसीआई हुटार में हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुछ विशेष बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे कि अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में हमें ज़रा सचेत रहना होगा। खासकर अगर हम देखें तो मलेरिया का प्रकोप बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, तो ऐसे में हमें चाहिए कि मलेरिया से बचना चाहिए। तो इसके लिए हम तो यही कहेंगे कि मलेरिया से बचाव ही सुरक्षा है। तो इसके लिए बहुत कुछ विशेष नहीं करना होता है, कुछ बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे हम क्या करें, जी हाँ, हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोए, मच्छरों से बचने हेतु आसपास सफाई रखें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने और बुखार होने पर तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। अगर हम कहें हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो श्रोताओं बिना मच्छरदानी के तो आप ना ही सोएं तो अच्छा है। मलेरिया के मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास जल जमाव ना होने दें। घर के आसपास या छत पर ऐसी कोई भी बेकार वस्तु नहीं रखें जिसमें पानी जमा होता हो। मलेरिया रोधी दवा का सेवन बीच में नहीं छोड़े, अपूर्ण उपचार नहीं कराएं। एक खास बात मैं बता दूं कि फिलहाल अगर हम देखें तो सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवा मुफ्त उपलब्ध है। तो आपसे हमारी गुजारिश यही होगी कि आप जब भी आपको लगे कि आप बीमार हैं या बुखार है, तो आप नज़दीक के अस्पतालों में जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना इलाज जरूर करें, और जो भी दवा दी जाती है उसका सेवन जरूर करें।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आ को गांव बड़गड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई का नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हतो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: मुकुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में उन्हीं उन्हीं ने बागिया तो कि दोनों आसे यार फी कोलो पुलिस कोलो उन्हीं लड़ाई चलाओ तमे दुर्गम गया तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाइ रो जिता हुरा रे मिनाइ रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिता हुरेन का अले आया नु तुम तेना मिल आप ही लेता ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब आइए कुछ विशेष बातें करते हैं। जी हाँ, 28 जून से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। जी हाँ, यानी 28 जून यानी कल 28 जून को बूथ दिवस, 29 30 को घर घर पिलाई जाएगी खुराक। श्रोताओं, अगर हम अपने पश्चिम सिंहभूम जिले की बातें करें तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को लेकर बहुत सारी तैयारियां की गई है। यह अभियान 28 जून से 30 जून 2026 तक चलेगा। 28 जून रविवार को बूथ दिवस मनाया जाएगा, जबकि 29 और 30 को स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाएंगे। अगर हम इस पर कुछ और जानकारी दें तो जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि जिले में 0 से 5 वर्ष आयु के कुल 241,301 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले के 2,329 आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक पोलियो बूथ संचालित होंगे। साथ ही 80 ट्रांजिट पॉइंट, 32 मोबाइल टीम तथा 3 जो है मेला या बाजार में के लिए टीमों का गठन किया गया है। इस अभियान के लिए श्रोताओं 4877 सहिया और सेविकाओं को वैक्सीनेटर तथा 423 CHO, NM एवं MPW को सुपरवाइजर बनाया गया है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है, जिससे कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से ना छूटे इस पर नजर रखेगी। इस राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी जी ने आम लोगों से विशेष अपील की है, आइए सुनते हैं।
9: मैं डॉक्टर जुझार माझी, सिविल सर्जन पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा। आज मैं आने वाला दिन 28 जून 2026 को NID पल्स पोलियो दिवस के संबंध में बताना चाहता हूँ। जैसा कि सरकार का योजना है, 28 जून 2026 को पूरे भारतवर्ष में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलानी है। हमारे ज़िले पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 241,301 बच्चे 0 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे लाभार्थी हैं। 2,329 बूथ है, 423 सुपरवाइजर स्टाफ है। प्रचार प्रसार हम लोग ने काफ़ी अच्छा किया है पूरे जिले वासियों से, और वो अभिभावक और गार्जियन से मेरा अनुरोध और आग्रह होगा, अगर आपके घर में 0 से 5 वर्ष के कोई भी बच्चे हैं तो 28 जून को अपने निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र में आप ले जाकर 2 बूंद पोलियो का दवा पिला दें। आप सभी का प्रयास से जिले को हम लोग पोलियो मुक्त बनाने में मदद करेंगे। पोलियो मुक्त पहले से भी है और उसको बरकरार रखने में हम लोग मदद करेंगे। याद रहे 28 जून 2026 दिन रविवार आपके निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्र में 2 बूंद पोलियो का दवा। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, इसी नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है बूथ के दिन हम लोग लगभग 95% बच्चों को हम लोग पिला सकेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, जिला प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, और भी हमारे जो अन्य विभाग है समाज कल्याण विभाग, उनकी भी मदद हम लोग को मिल रही है। तो मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 28 जून दिन रविवार 2026 हर आंगनवाड़ी केंद्र में पोलियो बूथ लगा हुआ है। अपने यहाँ 0 से 5 वर्ष के बच्चे को जरूर भेजें। धन्यवाद।
8: श्रोताओं, आइए अब हम अधिक जानकारी लेते हैं कि आखिर ये पोलियो है क्या। इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर VK पंडित, और उनसे बातचीत कर रही है निमिषा बेरुली।

0: क्षमा कीजिएगा, पहले आइए सुनते हैं एहसान फारूक।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि पल्स पोलियो है क्या और ये हमारे लिए कितना लाभप्रद है।
2: पल्स पोलियो, राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है हर साल। पिछले 2-3 साल से के बाद इस साल 28 जून को हर गांव के हर आंगनबाड़ी सेंटर में बूथ लगेगा, जिसमें पहला बूथ के दिन जो है 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में कभी भी पोलियो के कारण उनका शरीर का कोई भी अंग अचानक लुंज पुंज या पैरालिसिस ना हो। तो भविष्य में पैरालिसिस से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए 2 बूंद दवा बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है।
0: तो ये जो पोलियो जो दवा 2 बूंद हम बच्चों को पिलाएंगे, तो ये कितने वर्ष के बच्चे होने चाहिए?
2: 0 से 5 साल के सभी बच्चों को, 0 से 5 साल के सभी बच्चे बच्चियों को 2 बूंद की दवा पल्स पोलियो की ज़रूर पिलाना चाहिए।
0: एक बात और जानना चाहेंगे कि ये पल्स पोलियो 2 बूंद जो बच्चों को हम पिलाएंगे, तो किन किन बीमारियों से वो बच सकते हैं?
2: ये पल्स पोलियो की जो दवा पिलाई जाएगी बच्चों को, वैक्सीनेशन ओरल वैक्सीन जो मुंह से दिया जाएगा 2 बूंद, ये मेनली पोलियो से बचने की दवा है। अच्छा। एक बार अगर पोलियो किसी को हो जाए तो लाइलाज हो जाता है, तो भविष्य में किसी को पोलियो ना हो इसलिए 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाना अति आवश्यक है।
0: तो ये हर साल पिलाना चाहिए या 5 साल तक ही बच्चों को?
2: नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज जब जब होता है पूरे भारतवर्ष में, जैसे इस साल 28 जून को हो रहा है, उस दिन तो पिलाना है, और बाकी 29 तारीख और 30 तारीख को घर घर जाके हमारे प्रशिक्षित सहिया सेविका और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाके 0 से 5 साल के बच्चों को खोज कर ड्यू लिस्ट के अनुसार सबको पिलाएंगे। इसके बाद RI के दिन जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है उसमें भी पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाती है, उसमें पिलाना सुनिश्चित करेंगे। जो बच्चा नया जन्म लेता है, जन्म के बाद भी उसको पल्स पोलियो की दवा 3 दिन के अंदर पिलाई जाती है, वो भी पिलाना ज़रूरी है।
0: पल्स पोलियो के बारे में आप हमारे श्रोताओं को से क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरा तो यही अनुरोध होगा सबसे कि हर माँ बहनों से और अभिभावक से कि अपने घर के सभी 0 से 5 साल के बच्चों को बच्चियों को बूथ में जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या बूथ में जाकर 2 बूंद पल्स पोलियो का ज़रूर पिलाना सुनिश्चित करेंगे।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब आइए कुछ और हम जानकारी लेते हैं। जब हम मच्छरों की बातें कर रहे हैं तो एक और बीमारी है, जी हाँ, फलेरिया। फलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी मच्छर के काटने से ही होता है। फलेरिया दूसरे सबसे ज्यादा विकलांग एवं कुरूपता कराने वाली बीमारी है। यह शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करता है, जैसे हाथ, पैर, स्तन और हाइड्रोसिल। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है और बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाता है। लेकिन शरीर के अन्य अंगों में, पैर, हाथ, स्तन में जो सूजन आता है, आमतौर पर लाइलाज होता है। पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और करुणा की आवश्यकता होती है। समुदाय द्वारा तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड में, खासकर हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को इस बीमारी का खतरा बना रहता है। अब बातें आती है कि इस बीमारी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो श्रोताओं, इस बीमारी से बचाव बहुत ही आसान है। जैसे 2 साल के छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं देना चाहिए। यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। कृपया सभी दवाइयों का सेवन एक बार में ही करें। कुछ लोगों पर दवा खाने से मामूली प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, जैसे सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त इत्यादि, जिससे घबराने की जरूरत नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर के कीड़े फलेरिया रोधी दवा खाने से मर रहे हैं। तो श्रोताओं, मैं तो कहूंगा कि हाथी पांव मिटेगा बस 1 वर्ष में 1 खुराक, जो बिल्कुल सुरक्षित और मुफ्त है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची सहित राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना आर्थिक न्याय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण करना था। श्री अठावले आज रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के छात्र कई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं
1: और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट से स्टूडेंट के एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमरीका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अनेक देशों में वो मत शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत BLO को लौटा दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्टेट लेवल क्रिएटर्स मीट 2026 में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े 70 डिजिटल क्रिएटर्स को SIR का महत्व समझाते हुए सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने को कहा, ताकि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से न छूटे और एक भी अपात्र व्यक्ति न जुड़े। उन्होंने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर आंशिक भरे इन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां देंगे। एक BLO को लौटानी है और दूसरी पावती के रूप में रखनी है और फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित होगा। जामताड़ा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार ने आज समाहरणालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है।
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क उसमें है कि हाउस टू हाउस जो विजिट करेंगे हमारे BLO 30 से 2026 से 29-7-2026 तक हमारे BLO हर घर में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन को भी रेशनलाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ पोलिंग स्टेशन के बढ़ने की संभावना है।
0: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 19 जुलाई की जगह 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X handle @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक

0: आचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है।
1: इस नए जमाने में पुराने अपने विधियों के द्वारा पुराने हमारे उसमें हम अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा करें, बड़ी संख्या जनसंख्या है तो उसको कैसे हम इसको करें ताकि हम शुद्ध भी खाएं और हमारा पेट भी भर जाए सबका।
0: राजधानी रांची में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदायों ने ताजिया और अलम का जुलूस निकाला, जिसमें मेन रोड सहित अन्य स्थानों से गमे हुसैन में हजारों अजादार शामिल हुए। जुलूस में लोगों ने मातम करते हुए इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वहीं एक ताजिया को फाइटर जेट के मॉडल में बनाकर उसमें सैनिक वेश में युवकों को बिठाकर देशभक्ति और अमन का संदेश दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। श्री कुमार ने रांची सदर अस्पताल में 15 प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि लोगों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
2: मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, 2 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं रही लेकिन अभी जरूरत महसूस की गई है कि नहीं 2 साल के बाद अभी होना जरूरी है, तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए सारे रथ रवाना किए गए।
0: देवघर में स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं।
3: याद रखें कि 2011 से कोई मामला हमारे भारत में नहीं आया है पोलियो का, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कभी भी ये रिपीट ना हो, इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी, तो इतने मात्रा में जो दवा की व्यवस्था और पूरी सारी व्यवस्था की गई है बेकार हो जाएगी।
0: उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। हजारीबाग जिले के बरकटा थाना की पुलिस ने एक होटल के पास अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। बरही सीडीपीओ राधा प्रेम किशोर ने बताया कि ट्रक से 935 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। पुलिस ट्रक चालक उत्तराखंड निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 जून से मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: भारत से बाहर रहकर धनबाद समेत पूरे राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ जिले की पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। बीते गुरुवार को पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र से गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। धनबाद के ग्रामीण SP मोहम्मद सियाकूब ने बताया कि आने वाले दिनों में रेलवे टेंडर से जुड़े ठेकेदारों को प्रिंस खान गिरोह के नाम पर डराकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई जा रही थी।
2: पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच गए हैं, पहुंच के समय पर घेराबंदी करके वहां विधिवत प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको 2 पिस्टल और 33 राउंड्स लाइव राउंड्स गोली बरामद हुआ है। तो साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल सैमसंग का मोबाइल वो भी मिला है। तो ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं और पूछताछ करने के क्रम में का जो सूचना है उसको ये एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट करते हुए मतलब पिकारोक्ति बयान दिए हैं। और पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला है तो ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ये जो आर्म्स वगैरह है ये अफजल अमन जो है प्रिंस खान तो संगठित अपराध गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है, उनके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं।
1: धनबाद में इन दिनों आस्था के पर्व भोक्ता पूजा के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे। कल निर्जला एकादशी के अवसर पर पूर्वी टुंडी प्रखंड के बामनाबाद गांव में 4 दिवसीय भोक्ता पूजा का समापन हुआ। हजारों लोग इस पूजा में जुटे और अपने शरीर में कील और कांटे आदि चुभोकर भगवान की आराधना करते हुए अपने संयम का परिचय दिया। मुख्य पुजारी मनोज बनर्जी ने बताया कि बाबा धर्मराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है।
3: पहले यहाँ मेला उला बहुत लगता था, राजा आके यहाँ मेला में बैठे मेला का सब परिचालना कराता था। देखिए ये हमारा दादू जी पूजा करके गया है, उसके बाद बाबू जी, अभी हाँ मनोज बनर्जी अभी पूजा कर रहा है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर धनबाद भाजपा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में बीते दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है।
4: जो जन सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत के संगम को हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा, जहां 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पे पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी कि अब इस देश में कुछ नहीं होने। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले को बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास क्षमता है।
1: बहरहाल इन कार्यक्रमों के आयोजन से भाजपा मुख्य रूप से प्रबुद्ध नागरिकों और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी से गहरे तौर पर जोड़ने की कोशिश में है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिल सके। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है

सुनना चाहे दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, आकांक्षा और अरब। घोड़ाबांधा आलोक बिहार जमशेदपुर से राजीव, सुमन, आदित्य। ग्राम जोजो कुड़मा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो। सुपाईसाई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुश्मन प्रधान, मिथुन प्रधान। बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली और चिगड़ू महतो। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहां, गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब, राज पैलेस मौनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दुधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी। रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनू स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार। चांडिल ग्राम हरुडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मन महिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु। छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल और ऋतिक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म फकीरा का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है, पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया, कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, दुर्गाई सेलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सेयार कुलकर्णी, इसी गीत को सुनना चाहा है बेड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची कर्मकर और तनु कर्मकर, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी, तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहनी संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा बसंती, रमेश बनवाली बेसरा, अन्नू सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मन की आँखें। इस फिल्म का गाना आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

और आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, जीपी कुमारी, जयमणि, जयंती, अल्पना और नवीन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप। मोहल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, कुलसन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान और नीक पानी प्रधान। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जीवन मृत्यु, फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है।

और आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, राउफ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी। ददरेगी से भागवत वर्मा। धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा। बड़ी बाजार चाईवासा से मोजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबीहा। बड़ी बाजार चाईवासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईवासा से भोला राम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी। बड़ी बाजार चाईवासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन। आमला टोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौदागर का ये नगमा, आवाजें लता मंगेशकर की है।

अगली पसंद आप सबों की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जैतंग बीरक, मीका बीरक, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई तड़वी, परू मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारीकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, देवी अनिष्का और तन्मय गजभिये, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश, गांव कुईड़ा से पोंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा, खरसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मखरू आचार्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तवायफ का ये नगमा, आवाज महेंद्र कपूर की है।

अगली पसंद आप सबों की रेडवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, ग्राम जोजो कुड़मा से मनोज गगराई, बसंती गगराई, सोनाली गगराई, आयशा गगराई, रचना गगराई, जितेंद्र गगराई, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, गाँव कसवा बड़ा बाम्बू उड़ियासाई से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो एवं समस्त परिवार के सदस्य, महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलबनी महाली, शकुंतला महाली, सुमांती महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मीणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पगला कहीं का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। कासम कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, देश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिम मीना, हासिम मीना, कासमा गांव दलाई केला से। लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, गीता सोए, सीनी माई सोए, सरिता सोए, तनुजा सोए, सारिका द्वारिका सोए, सरगुजा मैनपाट से सोनी, सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, दीवा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोब, सरफुद्दीन डोब, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वशीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडी, सुरुमणि मुंडी, हीरामणि मुंडी, हिमांती मुंडी, डोबरो मुंडी, साजन मुंडी, कुशल मुंडी, जानम सिंह मुंडी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, FM सीमा मुंडी, बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, कुचाई बिद्री से KP सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी, ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, वीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की और लता मंगेशकर की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म का गाना आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है।

अगली फरमाइश है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गोवंकर राही, सरिता गोवंकर, प्रिंस एकांश गोवंकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोवंकर, प्रणीता गोवंकर, आकार हार्ट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गोवंकर, श्वेता सुमित गोवंकर, कुमारी ध्वनि गोवंकर परी, लाडला टुक टुक। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का यह नगमा, आवाज़ें SP बाला सुब्रमण्यम की है।

अगली फरमाइश है सेंटोला चाईबासा से भोलाराम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरे हम सफ़र का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश आप सबों की ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म लैला मजनू का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

अगली फरमाइश बड़ा बाम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा, सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, अन्नू बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये नगमा। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

अगली फरमाइश बड़ा निमटी चाईबासा से, तुलसी पथिक मीरा देवी बजरंगी ठाकुर मीतू रंजन राजीव रंजन मौलिक रंजन अमित कुमार सुमित कुमार और शुभम कुमार की है। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म क्रांति का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की है। गीत लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे ये गीत छत्रपति संभाजी नगर से राजेश अबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुद्दत का ये नगमा, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की है।

0: इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। अगर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घ यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम सतत विकास के प्रति। बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को 5 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क मिल है। ये आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी के ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आ... समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
3: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
4: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज प्रभु केम्पगौड़ा की 570वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभ निर्मित झीलें आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं।

0: चार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल 143 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं

0: पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्मर और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष, भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। Headlines. 50th Independence Anniversary Celebrations as Guest of Honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Sports in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation and fire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. Kidambi Srikant and Ronak Chauhan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to say

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं, हम लोग उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि अल्प्स से शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और की डेथ हो गई, तो उस घरों को सुरक्षित बनाए, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। इसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स से कंट्रोल होती है।
0: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
4: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
3: जी।
4: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी तो इसलिए ये सोचा गया जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
3: जी
4: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
3: जी
4: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
3: जी
4: और वो सुनाई नहीं देता था और एल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
3: जी।
4: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में नेटवर्क की समस्या है, वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
3: जी।
4: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि इस सफलता की कहानी तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
3: जी।
4: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
3: जी जी।
4: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
3: जी।
4: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
3: जी।
4: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौती
5: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
5: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में होता है। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं। भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पर हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और जून

0: महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ। मत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ। उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाश या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो रुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेम लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे काली गति से स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और

0: मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंपटीशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है। और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना

0: प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास के स्वर में कुछ गजल।

पंकज उदास द्वारा गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अभी समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों की रंग। इसका पहला गाना हमने लिया है फिल्म तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म से गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले।

0: कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है।
1: तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाख

अभी आपने सुना फिल्म मेरे हुजूर का ये गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आई सुनते हैं फिल्म महबूबा में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आइए सुनते हैं फिल्म महल में लता मंगेशकर को।

0: दिया तुम्हारे साथ?
1: नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो फाइल लेने आया था।
0: फाइल लेने यहाँ?
1: यहाँ तो मैं बच्चों का गाना सुनने आ गया।

अभी आपने सुना फिल्म जीने की राह। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी आशा भोसले, हेमलता और उषा मंगेशकर की। और आइए सुनते हैं फिल्म जंगली में लता मंगेशकर को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये नगमा, आवाज़ें मन्ना डे की है।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं, और आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा।